0: Welcome back to our other special report. After the Jantar Mantar agitation over paper leaks and exam reforms, hundreds of students have now hit the streets in Ranchi in Jharkhand, alleging corruption in recruitment exams, demanding sweeping reforms. The protest has now taken a political turn, with the BJP targeting the Hemant Soren government, the Congress and the Cockroach Janata Party, extending support to the agitators. Take a look at how Jharkhand's youth are now protesting. Get Real India.
1: Delhi's student uprising has found its echo in Ranchi. After Jantar Mantar, the battle over jobs, paper leaks and recruitment has now reached Jharkhand. Jaipal Singh Munda Stadium has turned into the epicenter of a growing youth movement. Tricolors flutter and students have launched an indefinite satyagraha, alleging deep-rooted corruption in Jharkhand's recruitment system. The students are protesting over alleged paper leaks in State Public Service Commission and Staff Selection Commission exams. Evaluation errors and OMR discrepancies. Years of delayed recruitment examinations. Irregularities in the recruitment process. Repeated exam delays. And rising unemployment.
2: Maniye Mukhyamantri ji, aap Jharkhand ke naujawanon ko naukri bechna band kijiye. और जितने भी आपके कार्यकाल में परीक्षाएं हुए हैं जेपीएससी और जेएसएससी में, वो सबका सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच कराइए, ताकि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिल सके।
3: सरकार जब तक हमारी जो मुद्दे हैं, जो मांग है, जब तक वो मानती नहीं है, तब तक हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे।
4: पूरी तरह से जेएसएससी जेपीएससी और सारे झारखंड के एग्जाम में रिफॉर्म चाहते हैं, बिना गड़बड़ी के एकदम निष्पक्ष एग्जाम हो, यही चाहते हैं।
5: कोई भी सरकार को जगाना है तो नींद नहीं आती हम लोग।
1: द फेस ऑफ द मूवमेंट इज देवेंद्रनाथ महतो, मिररिंग सोनम वांगचुक्स हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग द जंतर मंतर एजिटेशन. Mato has now begun an indefinite fast, vowing to continue until the students' demands are heard.
6: अच्छा, कुछ अरेस्ट भी हुए, फ्रेश अरेस्ट, वो सब जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? आज भी कुछ अरेस्ट नहीं हुआ?
7: ये सब लिपापोती है,
6: लिपापोती
7: ऐसा बहुत बार हुआ है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होता है, इस्तीफा देते हैं, लेकिन अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम ले लिया जाता है और सीट को बेचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे।
1: Their demands are clear. CBI and ED probe into recruitment scams. Cancel tainted exams and results. Fresh, fair and transparent examinations. Time-bound recruitment calendar. Action against paper leak culprits. Leak-proof exam and recruitment system. Transparent JPSC and JSSC recruitment. The parallels with Delhi are impossible to miss. Protesters say the Jantar Mantar movement inspired them to launch this fight. They claim the Hemant Soren government has yet to engage with them. The agitation has now acquired a political edge. Cockroach Janata Party founder Abhijit Deepke spoke to the protesters and extended support to their movement.
8: आप लोग students झारखंड में protest कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है।
1: द बीजेपी मीनवाइल हैज स्टेप्ड अप इट्स अटैक।
9: हमारा ये मानना है कि अविलंब सीबीआई जांच करा करके जेपीएससी जेएसएससी के तमाम मामलों पर जो छात्रों का मुख्य डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया इन लोगों ने एक नैतिक जिम्मेवारी तय करते हुए, वैसे ही इन सारी गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेवारी करते हुए हेमंत सोरेन जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
1: The spark that ignited Jantar Mantar has now reached Ranchi. And with the movement gathering momentum and politics escalating, the pressure on the Hemant Soren government is only mounting. With Satyajit Kumar, Bureau Report, India Today.
0: And we'll keep tracking that story from Jharkhand. Let's turn to some good news today as we end the show. It's a traditional fitness tool, especially across North India, that's making a comeback. Former wrestler Hawa Singh Rana has launched a campaign to take the age-old Mugdar into every home, distributing over 4,000 of them free to children. His mission is simple: get youngsters off their mobile screens and get them fit and well. Take a look at the latest fitness trick, the Mugdar. Take a look.

0: Mukhtar, a traditional fitness club, is getting a new lease of life. Thanks to Hava Singh Rana. The former wrestler Khera Kala in Delhi has launched what he calls Har Ghar Mukhtar, Ghar Ghar Mukhtar campaign to popularize its use. Rana has distributed over 4,000 mukhtars free to children.
1: दो साल के एक साल का भी बच्चा है वो भी फोन के अंदर घुस रहा है तो ऐसा क्यों इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों के हाथ में फोन मत दो इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि बच्चों के हाथ में अब मोबाइल नहीं हम मुकद्दर देंगे
0: The initiative to popularize मुकद्दर is funded by Rana and his friends.
1: घर के अंदर अगर जो मुकद्दर है किसी टाइम भी आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक मुकद्दर की एक्सरसाइज कर दोगे तो आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी रही जिम की बात जिम खराब चीज नहीं है हम ऐसे नहीं कहते कि जिम खराब है नहीं लेकिन जिम के अंदर भी कोशिश करें कि देसी एक्सरसाइज जरूर जोड़े और मुकद्दर तो जरूर जोड़े जिम के अंदर भी
0: Rana explains easy availability of Mukhtar means it can be used at homes by women as well.
2: मैं अपने बच्चों को यहाँ शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए यहाँ लाते हैं और उससे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और मोबाइल जो ये 6-6 घंटे 4-4 घंटे स्कूल से आने के बाद देखते थे वो ना के बराबर हो चुका है
3: हमने दिल्ली देहात के सरकारी स्कूलों में भी ये मुहिम और वहाँ से बहुत अच्छी मुहिम चल रही है बच्चे जागरूक हो रहे हैं
4: स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज है जिससे शरीर मजबूत होता है दिमाग शांत होता है बच्चा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है अच्छा खाना खाता है और आजकल तो स्पोर्ट्स में कैरियर भी बच्चों का बन रहा है तो इससे अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा बचपन से अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा
0: करंटली अराउंड 150 चिल्ड्रन ट्रेन अंडर राणा'स गाइडेंस विद सुशांत मेहरा ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे
5: Okay, you should try the Mukhtar every morning. Swing it around like this 10 times one way, 10 times the other. Trust me, and I'm trying it at the moment. It'll make you fit. Think about it. Traditional Indian Mukhtar, a mace of sorts. On that happy note, let me say good night, goodbye. Our thoughts, I can tell you, are with the people of Kerala and of Assam and several parts of the country where there are floods. Thank you so much for joining me. Do say a prayer for the people of those states. Good night. Goodbye. Jai Hind, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.

0: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
1: Swing and a foul out of play off to the left.
0: Big 12 Radio.
2: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
0: Talk Sport.
3: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
0: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
4: प्रक्रिया ये है फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा. आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है.
5: पर लगातार मेरी
4: पहली बात सही हुई, मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था. विनोद जी आइए, तोमर जी
6: आइए,
4: तोमर
6: साहब.
4: और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार. ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं. तो मैंने मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा. अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है.
7: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
8: CP Plus, ऊपर वाला सब देख रहा है.
9: Green Lamb Laminates, तारीफें दिखाई देंगी.

0: बांकीपुर की जनता की जीत है।
1: लाइट खोलो।
0: और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए।
2: சார் எங்களுக்கு உள்ள விடுங்க சார், அங்க சேனல் நிக்கிட்டு பாருங்க சார்.

सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा ऑनरेबल जज साहब ने कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है, बाइज्जत शब्द। मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है।

0: are watching India Today.
1: Good afternoon and welcome. You're watching India Today and I'm Anisha Mathur. And we're beginning this bulletin with an exclusive. Prashant Kishore won the Bankipur Assembly bipoll on Monday, securing the first seat for his Jan Swaraj party in the Bihar legislature. The victory places the Jan Swaraj founder inside the house, where he can now confront Chief Minister Samrat Chaudhary directly. Prashant Kishore has been targeting Chaudhary relentlessly since the latter was made the Chief Minister in April, and his criticism of the BJP leader has been an important poll plank of the poll strategist turned politician. India Today's Rohit Singh spoke exclusively to Prashant Kishore. Let's listen in.
2: Namaskar, aaj tak dekh rahe hain aap aur aaj tak par is waqt hamare saath maujood hain बांकीपुर के नए विधायक जिन्होंने बीजेपी के 30 साल के पुराने गढ़ में सेंधमारी की है, उस किले को ढा दिया है. प्रशांत किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे. 30 साल तक जो किला रहा बीजेपी का, उसको 30 दिन में कैसे प्रशांत किशोर ने ढा दिया? क्या आपको मालूम था कि ऐसा करना संभव है, क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ है बिहार में बीजेपी का बांकीपुर?
3: नहीं, वो तो है, लेकिन गढ़ तो जनता ही बनाती है और बिगाड़ती है. मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा को इसलिए हराया है क्योंकि जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार को दिया है चुनाव जीतने के बाद, नवंबर 2025 में इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार पर थोपा है एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है. एक सातवीं फेल व्यक्ति, 7 लोगों की हत्या में जो जेल में रहा हो, उस व्यक्ति को सिर्फ आप भाजपा का चोला पहनाकर अगर बैठा देंगे तो जनता को स्वीकार्य नहीं होगा. दूसरा, जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार रहा है, जहां ये चर्चा घर घर चली, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी जनता यहीं पर हम्मी को वोट देगी, उस अहंकार के खिलाफ वोट पड़ा है. और तीसरा, भाजपा के जो विधायक और सांसद हैं, कहीं ना कहीं वो सब इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं. वो जानते हैं कि जब चुनाव होगा, काम करें ना करें, हर हालत में जनता जाति धर्म के नाम पर वोट हमी को देगी, नहीं देगी तो मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगा जाएगा, और कुछ नहीं चलेगा तो लालू के जंगल राज का डर दिखाकर वोट लिया जाएगा. तो इन तीनों चीज का जो कंबाइंड असर रहा है, उसकी वजह से लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है.
2: क्योंकि इस चुनाव के पहले भी हमने आपसे बात की थी, आपने इसमें एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की वो था जनमत संग्रह, और आप ये कह रहे थे कि भाई ये एक रेफरेंडम हो सकता है इसमें मौजूदा सरकार पर, सम्राट चौधरी पर, और आप ये भी कह रहे थे कि भाई एक वोट या एक विधायक जीत जाएगा तो सरकार में कुछ नहीं होने वाला है, एक विपक्ष भी जीत जाएगा तो कुछ नहीं. तो क्या लगता है आपको, ये नैरेटिव जो है लोगों के घर कर गया, दिल में भाया?
3: नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, और जिन लोगों ने भाजपा को एनडीए को वोट दिया, उसमें एक प्रमुख मुद्दा प्रधानमंत्री ने आकर खुद बनाया कि जंगल राज नहीं लौटना चाहिए, लेकिन उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को आपने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया. और लोकतंत्र में यह संभव है कि जो पार्टी जीत कर आए उसका उसका नेता जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनाएगा तो जनता के पास भी यह अवसर है अपना मत देने का. तो पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री यहां बना है, और लोगों ने जब वोट दिया तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट मोदी जी को मैसेज दिया है ये लोगों ने, क्योंकि ये भाजपा के विरोधी लोग नहीं है, ये भाजपा के समर्थक हैं. गौर करने वाली बात है कि बांकीपुर में जिन लोगों ने वोट दिया है जन स्वराज को, ये ज्यादातर लोग भाजपा के समर्थक लोग हैं. इन्होंने क्यों वोट दिया? इसलिए वोट दिया क्योंकि उनको भाजपा का अहंकार स्वीकार्य नहीं है, उनको भाजपा का ये वक्तव्य नहीं स्वीकार्य है कि कुत्ता बिल्ली को भी हम देंगे तो भी तुमको वोट देना पड़ेगा. और सबसे बढ़कर उनको ये बात नहीं स्वीकार्य है कि जिस बिहार को जंगल राज से मुक्त करने के नाम पर आपने वोट लिया, उसी जंगल राज के किसी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया. तो लोगों के पास मोदी जी को फोन करने का अवसर तो है नहीं, लोग मोदी जी से मिलकर तो बात नहीं कर सकते हैं. लोगों के पास क्या अवसर है? वोट का अवसर है. तो हमने लोगों को बताया कि भाई अगर आप मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व आपको स्वीकार्य नहीं है, तो यही मौका है आपके पास, आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, मोदी जी को खबर होगी. और आज मैं समझता हूं कि मोदी जी को खबर हुई है कि 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, सारे समीकरण ध्वस्त है. जब ये वो भाजपा है जो कहती हम बूथ जीतते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, शक्ति केंद्र बनाते हैं, कहां गया सब?
2: ये बात आप मानते हैं कि आपका अपना वहां कोई वोट नहीं था, सारी वोट जो आपने बीजेपी का वोट है या फिर महागठबंधन का वोट था, उसी में सेंधमारी आपने की है?
3: सेंधमारी की क्या बात है इसमें? कोई सेंधमारी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं उनका. 422 बूथ है और 17 या 18 बूथ को छोड़ दीजिए, 400 से ज्यादा बूथ पर जन स्वराज जीती है। तो इसमें सेंधमारी क्या है? जनता ने तय किया भाई अब आपको नहीं देंगे वो।
2: यानी आपको लगता है कि जो बांकीपुर की जनता है इस वक्त मौजूदा समय में बीजेपी से नाराज चल रही है?
3: बीजेपी के राजनीतिक अहंकार से नाराज चल रही है, बीजेपी के इस निर्णय से नाराज है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी के इस कार्यशैली से नाराज है जहां विधायक मंत्री बस बैठा रहता है और 5 वर्ष के बाद मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है, लालू जी का डर दिखाकर वोट मांगता है। संभव है कि बीजेपी के दल से नाराज ना हो लेकिन बीजेपी के कार्यशैली से नाराज है।
2: सम्राट चौधरी साहब की समस्या क्या है? क्योंकि पिछले 2025 के चुनाव से जो सवाल पूरा करने दीजिए, उससे पहले से आप उनके खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, बातें रख रहे हैं, अभी भी कह रहे हो कि पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री है कि भाई सम्राट चौधरी अगर हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको स्वीकार
3: है? नहीं कह रहा हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि सम्राट चौधरी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, वो तो हमको कैमरे पर भाई बोलते हैं, कल भी बधाई दिया है।
2: बिल्कुल
3: बात सम्राट चौधरी व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? क्या ऐसा आदमी करेगा जो अपने डिग्री के बारे में गलत बताता है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो 7वीं फेल है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है? क्या भाजपा में और कोई पढ़ा लिखा समझदार काबिल चरित्रवान व्यक्ति नहीं बचा है? कुछ लोग कह रहे भी सामाजिक समीकरण के तहत बनाया गया, कुशवाहा समाज को बनाया गया। भाई मैं तो कैमरे पर कह रहा हूं कुशवाहा समाज के आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन उस समाज में भी तो एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक काबिल, एक से एक चरित्रवान लोग हैं। उस जंगल राज वाले आदमी को क्यों बना रहे हो? और अगर जंगल राज वाले आदमी को बना रहे हो तो फिर जनता को ये क्यों कह रहे हैं कि आप जंगल राज के विरोध में हैं? आप जिस जंगल राज के खिलाफ लोगों ने आपको वोट दिया है उसी के एक आदमी को अगर आप भगवा झंडा पहनाकर भगवा ओढ़ी ओढ़ाकर बैठा दीजिएगा तो जनता को स्वीकार्य नहीं।
2: मतलब आपको लगता है सम्राट चौधरी आज बीजेपी में भले हैं लेकिन जंगल राज के प्रतीक हैं?
3: प्रतीक भाई, वो जब बने तो सबसे पहले उनके पक्ष में कौन बोला? साधु यादव बोले। पटना में जो लोग पत्रकारिता करते हैं जरा पूछ ले कि बोरिंग रोड इलाके में सम्राट चौधरी क्या करते थे लालू जी जब मुख्यमंत्री थे? तो भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात की इतनी चिंता और बिहार के लोगों के लिए 5 किलो अनाज, ये तो परिपाटी टूटनी चाहिए ना भाई। गुजरात के 25 MP जीत कर गए हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने भी तो 35 MP जिताकर भेजा है, तो बिहार के बच्चों के लिए भी तो पढ़ाई की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी तो रोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो। यहां पर आप सिर्फ 5 किलो अनाज की बात क्यों करते हैं? तो ये तो दोहरापन है ना। आप बिहार में भी सबसे काबिल आदमी को भेजिए, पूरे देश में जो सबसे काबिल व्यक्ति हो बिहार का हो उसको आप बनाइए बिहार में मुख्यमंत्री, हम लोग का कोई विरोध नहीं है।
2: तो यानी
3: बिहार में तरक्की होनी चाहिए भाई, मुख्यमंत्री तो बिहार भाजपा का ही होगा, मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर तो बन नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा। तो हम लोग तो आपसे हाथ जोड़कर इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि किसी अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी तरक्की हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पढ़ाई हो, हम लोग के बच्चों के लिए भी रोजगार हो, पलायन बंद हो, बस मेरा इतना ही एजेंडा है।
2: सम्राट चौधरी के नेतृत्व से आपको समस्या है कि उनको बदलना चाहिए?
3: आप भाई इससे ज्यादा क्या समस्या होगी? आप बताइए कि जो आदमी सम्राट चौधरी के पिछले 3 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, उन्होंने क्या बात कही है? अपराध, अपराधी, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, गमछा देख कर मारो, गोली देख कर मारो, जात पूछ कर मारो, ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या उन्होंने पढ़ाई की बात की? क्या उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कैसे सुधारना है बात की? क्या पलायन कैसे रुकेगा इस पर बात की? तो हम लोग तो मोदी जी को बस इतना ही कह रहे हैं कि सर आपको 2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, थोड़ा तो तरस खाइए बिहार के लोगों पर। हम लोग सबसे गरीब है, सबसे पिछड़े हैं, बिहार के लोगों पर थोड़ा तो तरस खाइए। कितना दिन तक हम लोग के बच्चे बंदे भारत में बैठ के जानवरों की तरह जाकर गुजरात में नौकरी करते रहेंगे? 1-2 फैक्ट्री बिहार में भी तो लगवाइए भाई
2: प्रशांत जी, लेकिन आपको लगता है?
3: और अगर नहीं लगवाइएगा तो जिस तरह से बांकीपुर में रिवोल्ट हुआ है अगले लोकसभा में रिवोल्ट आपको दिखेगा।
2: आपको लगता नहीं है कि ये जो सिचुएशन, ये टाइमिंग जो आपके चुनाव का रहा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज रहा? क्योंकि आपने, अगर ये चुनाव नहीं होता तो पहले तो आप 2030 तक आपको मेहनत करनी पड़ती, लेकिन ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये हुआ। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे 3-4 महीने में बिहार में ऐसे हुए, नीट छात्रा की हत्या, भोजपुर एनकाउंटर, ब्राह्मण समाज का लड़का भरत तिवारी मारा गया, उसको आपने लपका वहां पे, आप गए भी वहां पे, साथ ही साथ ये जो युवाओं का प्रोटेस्ट अभी हुआ है, तो 3-4 ऐसे मुद्दे हुए जो बीजेपी को खिलाफ जा रहे थे।
3: अगर आपने मेरे वक्तव्य पहले कभी सुने हो राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैंने हमेशा कहा है कि जिस देश में 60% लोग दिन में $2 नहीं कमाते हैं वहां पर विपक्ष कभी सरकार के खिलाफ कमजोर नहीं हो सकता, विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। हर आदमी सरकार का भक्त नहीं है। मोदी जी जब जीत कर भी आते हैं तो 34-35% वोट मिलता है, मतलब 65% आदमी सत्ता के विपक्ष में है। तो आप लोग ये बताते हैं कि पूरा देश एकदम मोदीमय हो गया, ठीक है 35% वोट मिला है इसलिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग खुश है, सब आदमी को कोई परेशानी नहीं है। तो आज मुद्दे आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। भाई भरत तिवारी का आपने मामला उठाया, ये यहाँ का बीजेपी का एक दो मतलब ठग टाइप का एक एमपी है, क्या नाम है जो गाना गाते हैं,
2: मनोज तिवारी।
3: अभी चुनाव के दौरान भरत तिवारी के लोगों को लाकर सम्राट चौधरी से मिलाया, 50 लाख रुपए का परिवार को लालच दिया। आप जरा अंदाजा लगाइए न्याय का मतलब क्या है। कैमरे पर हम लोगों ने कहा है कि न्याय का मतलब है गृह विभाग की भूमिका की जांच। न्याय का मतलब यह है कि एसटीएफ के जिन लोगों ने गोली चलाई उनसे ये पूछा जाए कि आपको गोली चलाने का आदेश किसने दिया है। चुनाव के दौरान दिल्ली का सांसद आता है, उस परिवार को जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त स्थिति में है उनको लाकर सम्राट चौधरी से मिलाता है वोट के लिए। अब मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं मनोज तिवारी आओ और उस परिवार को न्याय दिलवाओ, और अगर नहीं दिलवाओगे तो ये ढोंग करना, गाना गाना और बिहार में आकर वोट मांगना बंद करो। बिहार दिल्ली नहीं है, यहाँ जनता दौड़ा कर मारेगी, अगली बार वोट मांगना छोड़ दो, घुस नहीं पाओगे बिहार में।
2: सम्राट चौधरी
1: And it's time now for us to go across to Sakshi Batra of Business Today, who joins us with all the updates of the markets. Sakshi, over to you.
4: Look, this investment guru tips will double your money. Just claim the offer.
5: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
6: Presented by National Stock Exchange.

0: are watching India Today.
1: Welcome back. Congress MP Dipender Hooda has questioned the decision to host 2030 Commonwealth Games in Ahmedabad, asking why Haryana was overlooked despite producing the country's largest share of medal winners. Hooda has argued that Haryana deserves to host the games or at least be made a co-host, and has said that the centre should invest in sports infrastructure in Haryana as it has in Gujarat. Hooda also took a swipe at Prime Minister Narendra Modi, accusing the government of following Rajya Dharma instead of Raj Dharma. Listen in to this conversation.
2: Do you think that the state, which has been the largest medal contributor, will necessarily be good in infrastructure also to hold an event like Commonwealth Games?
3: Lakhs of crores are going to be invested in developing sports infrastructure, sports facilities for the state or the location where the games are going to be hosted. Now, question is not just about hosting and us as Indians feeling proud about being the host nation, but question is also about what our aim should be, to be on the top of medal tally. And to be on the top of the medal tally, these lakhs of crores, if are invested in sports infrastructure in Haryana, are going to make much more, Haryana's sportsperson will be able to make much more contribution to the national tally, and we will be able to achieve that aim of actually being proud of being top of medal tally. In fact, this argument that the government has given that Gujarat has a little better infrastructure, first of all, it needs to be checked. I'm not accepting that argument. I don't agree with it fully.
2: So, Mr. Hooda, your point is that it's not just about the hosting rights, it's also about spending more on the sports in Haryana, giving more funds to Haryana for the sports development?
3: Already in Khelo India, on one hand, in Khelo India, the Gujarat gets the largest sports budget. And Haryana is amongst the states which gets the lowest sports budget. When the government of India came out with bullet train project and said that Mumbai will be connected to the capital of Gujarat and not capital of India, which is Delhi, through bullet train, because there are very big business houses who are present in Ahmedabad, we did not raise any question. But now, for everything, if you choose that particular location, and see, in those in powers will have to also follow the dharma of Raj Dharma. And Raj Dharma means seeing every state with an equal eye. They are not following Raj Dharma, they are following Rajya Dharma.
2: So, Mr. Dipender Hooda, do you think that this choice of hosting the Commonwealth Games in Gujarat, in Ahmedabad, is more of a political decision that has been taken by the centre? Are you saying so?
3: Of course. It's a political decision. See, if you look at all the, like, you cricket, you see, where all the big games, all the finals, etc. If they are going to develop world-class wrestling infrastructure, would it be better if it is they do it in Rohtak or Ahmedabad? They'll be developing world-class athletics and track and field infrastructure. Would it be better if they develop it in Karnal, where Neeraj Chopra, or Panipat, where Neeraj Chopra comes from? Or would it be better everything in Ahmedabad? That is the question. I've come from the land of Mahabharata, where, Pandav went to Kaurav, and through Bhagwan Krishna, they said, ki nyay do, pura nahi to adha do. If not the host, at least let Haryana be co-host.
1: And psycho Mirabai Chanu continues to script history and add new milestones to her extraordinary career. With a record-extending third consecutive Commonwealth Games gold in Glasgow, she has further strengthened her legacy as one of the greatest weightlifters in Commonwealth history. My colleague Pooja Shali spoke to the champion. Listen in to that exclusive conversation.
4: India वापस आए, कैसे आपका वेलकम हुआ है?
5: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जब इन दिल्ली एयरपोर्ट में जब पहुंचा था तो इतना सारी फ्रेंड्स आए थे दिल्ली में, मणिपुर से भी फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, और अब दिल्ली में बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे वेलकम दिया था, इतना ऑनर किया है, तो ये बहुत ही खुश है कि ऐसा एक प्लेयर होने के नाते ना इतना प्यार दिया है मुझे, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली अभी जस्ट मैं रूम में ही पहुंची हूँ तो बस बहुत ज्यादा खुश है।
4: मीरा भाई, इस बार हमने एक चीज नोटिस करी, क्या मैं सही हूँ कि पहली बार ऐसा शायद हुआ है कि जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, उन्होंने ज्यादा मेडल लाए, गोल्ड मेडल भी उन्होंने ज्यादा लाए, डिफरेंट स्पोर्ट्स में लाए।
5: पहले फीमेल नहीं आती थी, किसके लिए नहीं आती, क्या रीजन है वो मुझे पता नहीं, पर वेटलिफ्टिंग में फीमेल बहुत ज्यादा कम होते थे, तो की बात से ही इतना सारी लड़कियां आई है और पार्टिसिपेट भी किया है। इस बार भी देखो सिल्वर मेडल लेके आई है बिंदिया रानी और ज्ञानेश्वरी, बहुत सारी फीमेल बॉक्सिंग में भी देखो, 7 गोल्ड में से कितने लड़की है इसमें,
4: टोटल 13 गोल्ड में 8 जो है वो लड़कियों ने लिया,
5: लड़की है, लड़की ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि लड़की हम जो भी करना चाहते हैं हम उसको ठान लेते हैं, हमको चाहिए चाहिए, उसको पकड़ के रखना है, करना ही करना है।
4: मीरा भाई, आप ऐसे स्टेट से भी आती हैं जिसने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं, मणिपुर से आप आती हैं, तो और इस बार मणिपुर से एक के बाद एक मेडल्स भी आए, कितना कुछ हुआ है वहां पर, लेकिन फिर भी आपने फोकस रखा।
5: मैं मणिपुर से बिलोंग करती हूँ पर मैं मणिपुर में ट्रेनिंग नहीं करती, मैं बाहर में ट्रेनिंग करती हूँ, फिर भी मैं मणिपुर से आई हूँ, मैं मणिपुर में पैदा हुआ हूँ, मेरा होम टाउन मणिपुर में है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होते है कि जब कहीं पर भी वो घर जल रहे होते हैं और कोई भाग रहे होते हैं, मर रही होते हैं, तो वो देख के ना बहुत दुख होता है कि हाँ मेरे साथ नहीं हुआ है फिर भी मेरा होम टाउन में ही हो रही है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा था, फिर इस ओलंपिक की टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ था, अभी भी कुछ न कुछ चल रही है, अभी खत्म भी नहीं हुआ है, फिर भी मैं वो सब एक्साइटमेंट रख के जो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं मणिपुर के लिए कर रही हूँ, इंडिया के लिए कर रही हूँ, वही दिखाना था मुझे, तो बस मैं दिल में हाथ रख के मैं स्ट्रोंग रख के उसको किया था कि जो भी हो जो मैं कर रही हूँ मैं दिखा के ही रहेगी, तो मैं बस सबको, मैं मणिपुर की प्रजा को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया है मेरे लिए, इतना सपोर्ट दिया है, पूरा भारतवर्ष ने सपोर्ट दिया है मुझे, और बस सरकार से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि मणिपुर पहले जैसा शांति आया तो और भी ज्यादा मणिपुर से प्लेयर्स बहुत सारी अच्छी अच्छी निकलेगी और इंडिया के नाम को भी और ऊपर करने की हर टाइम में तैयारी में रहे।
1: And Ariana Grande is making headlines once again, but this time it's not just for her music. Her latest appearances have sparked intense online debate over her noticeably slimmer look, dividing the internet between concern and criticism. And amid the speculation, the singer has reportedly decided to step back from the spotlight after her tour. I leave you with this report.

0: नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और आज तक पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाकीपुर के नए विधायक, जिन्होंने बीजेपी के 30 साल के पुराने गढ़ में सेंधमारी की है, उस किले को ढा दिया है। प्रशांत किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे। 30 साल तक जो किला रहा बीजेपी का, उसको 30 दिन में कैसे प्रशांत किशोर ने ढा दिया? क्या आपको मालूम था कि ऐसा करना संभव है, क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ है बिहार में बीजेपी का बांकीपुर?
1: नहीं, वो तो है, लेकिन गढ़ तो जनता ही बनाती और बिगाड़ती है। मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा को इसलिए हराया है क्योंकि जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार को दिया है चुनाव जीतने के बाद, नवंबर 2025 में इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार पर थोपा है एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है। एक सातवीं फेल व्यक्ति, 7 लोगों की हत्या में जो जेल में रहा हो, उस व्यक्ति को सिर्फ आप भाजपा का चोला पहनाकर अगर बैठा देंगे तो जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरा, जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार रहा है, जहाँ ये चर्चा घर घर चली, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी जनता यहीं पर हम ही को वोट देगी, उस अहंकार के खिलाफ वोट पड़ा है। और तीसरा, भाजपा के जो विधायक और सांसद हैं, कहीं ना कहीं वो सब इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, वो जानते हैं कि जब चुनाव होगा काम करें न करें हर हालत में जनता जाति धर्म के नाम पर वोट हम ही को देगी, नहीं देगी तो मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगा जाएगा, और कुछ नहीं चलेगा तो लालू के जंगल राज का डर दिखाकर वोट लिया जाएगा। तो इन तीनों चीज का जो कंबाइंड असर रहा है, उसकी वजह से लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है।
0: क्योंकि इस चुनाव के पहले भी हमने आपसे बात की थी, आपने इसमें एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की वो था जनमत संग्रह, और आप ये कह रहे थे कि भाई ये एक रेफरेंडम हो सकता है इसमें मौजूदा सरकार पर, सम्राट चौधरी पर, और आप ये भी कह रहे थे कि भाई एक वोट या एक विधायक जीत जाएगा तो सरकार में कुछ नहीं होने वाला है, एक विपक्ष भी जीत जाएगा तो कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको, ये नैरेटिव जो है लोगों के घर कर गया, वो दिल में भाया?
1: नहीं, देखिए, लोकतंत्र है और जिन लोगों ने भाजपा को एनडीए को वोट दिया उसमें एक प्रमुख मुद्दा प्रधानमंत्री ने आकर खुद बनाया कि जंगल राज नहीं लौटना चाहिए, लेकिन उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को आपने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और लोकतंत्र में यह संभव है कि जो पार्टी जीतकर आए उसका उसका नेता जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनाएगा तो जनता के पास भी ये अवसर है अपना मत देने का। तो पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री यहां बना है और लोगों ने जब वोट दिया तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट मोदी जी को मैसेज दिया है ये लोगों ने, क्योंकि ये भाजपा के विरोधी लोग नहीं है, ये भाजपा के समर्थक हैं। गौर करने वाली बात है कि बांकीपुर में जिन लोगों ने वोट दिया है जनसुराज को, ये ज्यादातर लोग भाजपा के समर्थक लोग हैं। इन्होंने क्यों वोट दिया? इसलिए वोट दिया क्योंकि उनको भाजपा का अहंकार स्वीकार्य नहीं है, उनको भाजपा का ये वक्तव्य नहीं स्वीकार्य है कि कुत्ता बिल्ली को भी हम देंगे तो भी तुमको वोट देना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर उनको ये बात नहीं स्वीकार्य है कि जिस बिहार को जंगल राज से मुक्त करने के नाम पर आपने वोट लिया, उसी जंगल राज के किसी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों के पास मोदी जी को फोन करने का अवसर तो है नहीं, लोग मोदी जी से मिलकर तो बात नहीं कर सकते हैं। लोगों के पास क्या अवसर है? वोट का अवसर है। तो हमने लोगों को बताया कि भाई अगर आप मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व आपको स्वीकार्य नहीं है, तो यही मौका है आपके पास, आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, मोदी जी को खबर होगी। और आज मैं समझता हूं कि मोदी जी को खबर हुई है कि 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, सारे समीकरण ध्वस्त है। जब ये वो भाजपा है जो कहती हम बूथ जीतते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, शक्ति केंद्र बनाते हैं, कहां गया सब?
0: तो ये बात आप मानते हैं कि आपका अपना वहां कोई वोट नहीं था, सारी वोट जो आपने बीजेपी का वोट है या फिर महागठबंधन का वोट था उसी में सेंधमारी आपने की है?
1: सेंधमारी की क्या बात है इसमें? कोई सेंधमारी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं उनका। 422 बूथ है और 17 या 18 बूथ को छोड़ दीजिए, 400 से ज्यादा बूथ पर जनसुराज जीती है, तो इसमें सेंधमारी क्या है? जनता ने तय किया भाई अब आपको नहीं देंगे वोट।
0: यानी आपको लगता है कि जो बांकीपुर की जनता है इस वक्त मौजूदा समय में बीजेपी से नाराज चल रही है?
1: बीजेपी के राजनीतिक अहंकार से नाराज चल रही है, बीजेपी के इस निर्णय से नाराज है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी के इस कार्यशैली से नाराज है जहां विधायक मंत्री बस बैठा रहता है और 5 वर्ष के बाद मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है, लालू जी का डर दिखाकर वोट मांगता है। संभव है कि बीजेपी के दल से नाराज ना हो लेकिन बीजेपी के कार्यशैली से नाराज है।
0: सम्राट चौधरी से आपकी समस्या क्या है? क्योंकि पिछले 2025 के चुनाव से मैं जो सवाल पूरा करना चाहिए, उससे पहले से आप उनके खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, बातें रख रहे हैं, अभी भी कह रहे हो कि पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री है कि भाई सम्राट चौधरी अगर हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको स्वीकार?
1: नहीं कह रहा हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहली बात आप ये समझिए कि सम्राट चौधरी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, वो तो हमको कैमरे पर भाई बोलते हैं, कल भी बधाई दिया है। बात सम्राट चौधरी व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार का नेतृत्व तो कौन करेगा। क्या ऐसा आदमी करेगा जो अपने डिग्री के बारे में गलत बताता है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो सातवीं फेल है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो सात लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है? क्या भाजपा में और कोई पढ़ा लिखा समझदार काबिल चरित्रवान व्यक्ति नहीं बचा है? कुछ लोग कह रहे भी सामाजिक समीकरण के तहत बनाया गया, कुशवाहा समाज को बनाया गया। भाई मैं तो कैमरे पर कह रहा हूं, कुशवाहा समाज के आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन उस समाज में भी तो एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक काबिल, एक से एक चरित्रवान लोग हैं। उस जंगल राज वाले आदमी को क्यों बना रहे हो? और अगर जंगल राज वाले आदमी को बना रहे हो तो फिर जनता को ये क्यों कह रहे हैं कि आप जंगल राज के विरोध में हैं? आप जिस जंगल राज के खिलाफ लोगों ने आपके आपको वोट दिया है, उसी के एक आदमी को अगर आप भगवा झंडा पहनाकर भगवा ओढ़नी ओढ़ाकर बैठा दीजिएगा तो जनता को स्वीकार्य नहीं।
0: मतलब आपको लगता है सम्राट चौधरी आज बीजेपी में भले हैं लेकिन जंगल राज के प्रतीक हैं?
1: प्रतीक भाई, वो जब बने तो सबसे पहले उनके पक्ष में कौन बोला? साधु यादव बोले। पटना में जो लोग पत्रकारिता करते हो जरा पूछ ले कि बोरिंग रोड इलाके में सम्राट चौधरी क्या करते थे लालू जी जब मुख्यमंत्री थे? तो भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात की इतनी चिंता और बिहार के लोगों के लिए 5 किलो अनाज, ये तो परिपाटी टूटनी चाहिए ना भाई। गुजरात के 25 एमपी जीत कर गए हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने भी तो 35 एमपी जिताकर भेजा है, तो बिहार के बच्चों के लिए भी तो पढ़ाई की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी तो रोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो। यहां पर आप सिर्फ 5 किलो अनाज की बात क्यों करते हैं? तो ये तो दोहरापन है ना। आप बिहार में भी सबसे काबिल आदमी को भेजिए, पूरे देश में जो सबसे काबिल व्यक्ति हो बिहार का हो उसको आप बनाइए बिहार में मुख्यमंत्री, हम लोग का कोई विरोध नहीं है। तो बिहार में तरक्की होनी चाहिए भाई, मुख्यमंत्री तो बिहार भाजपा का ही होगा, मुख्यमंत्री प्रधान प्रशांत किशोर तो बन नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा। तो हम लोग तो आपसे हाथ जोड़कर इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि किसी अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी तरक्की हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पढ़ाई हो, हम लोग के बच्चों के लिए भी रोजगार हो, पलायन बंद हो, बस मेरा इतना ही एजेंडा है।
0: सम्राट चौधरी के नेतृत्व से आपको समस्या है कि उनको बदलना चाहिए?
1: आप भाई इससे ज्यादा क्या समस्या होगी? आप बताइए कि जो आदमी सम्राट चौधरी के पिछले 3 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, उन्होंने क्या बात कही है? अपराध, अपराधी, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, गमछा देख कर मारो, गोली देख कर मारो, जात पूछ कर मारो, ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या उन्होंने पढ़ाई की बात की? क्या उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कैसे सुधारना है बात की? क्या पलायन कैसे रुकेगा इस पर बात की? तो हम लोग तो मोदी जी को बस इतना ही कह रहे हैं कि सर आपको 2-2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, थोड़ा तो तरस खाइए बिहार के लोगों पर। हम लोग सबसे गरीब है, सबसे पिछड़े हैं, बिहार के लोगों पर थोड़ा तो तरस खाइए। कितना दिन तक हम लोग के बच्चे बंदे भारत में बैठ के जानवरों की तरह जाकर गुजरात में नौकरी करते रहेंगे? 1-2 फैक्ट्री बिहार में भी तो लगवाइए भाई
0: प्रशांत जी, लेकिन आपको लगता
1: है? और अगर नहीं लगवाइएगा तो जिस तरह से बाकीपुर में रिवोल्ट हुआ है, अगले लोकसभा में रिवोल्ट आपको दिखेगा।
0: आपको लगता नहीं है कि ये जो सिचुएशन, ये टाइमिंग जो आपके चुनाव का रहा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा? क्योंकि आपने, अगर ये चुनाव नहीं होता तो पहले तो आप 2030 तक आपको मेहनत करनी पड़ती, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे 3-4 महीने में बिहार में ऐसे हुए, नीट छात्रा की हत्या, भोजपुर एनकाउंटर, ब्राह्मण समाज का लड़का भरत तिवारी मारा गया, उसको आपने लपका वहां पे, आप गए भी वहां पे, साथ ही साथ ये जो युवाओं का प्रोटेस्ट अभी हुआ है, तो 3-4 ऐसे मुद्दे हुए जो बीजेपी को खिलाफ जा रहे थे।
1: अगर आपने मेरे वक्तव्य पहले कभी सुने हो राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैंने हमेशा कहा है कि जिस देश में 60% लोग दिन में $2 नहीं कमाते हैं, वहां पर विपक्ष कभी सरकार के खिलाफ कमजोर नहीं हो सकता, विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। हर आदमी सरकार का भक्त नहीं है, मोदी जी जब जीत कर भी आते हैं तो 34-35% वोट मिलता है, मतलब 65% आदमी सत्ता के विपक्ष में है। तो आप लोग ये बताते हैं कि पूरा देश एकदम मोदीमय हो गया, ठीक है 35% वोट मिला है इसलिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग खुश हैं, सब आदमी को कोई परेशानी नहीं है। तो आज मुद्दे आ गए ऐसी बात नहीं है भाई। भरत तिवारी का आपने मामला उठाया, ये यहाँ का बीजेपी का एक दो मतलब ठग टाइप का एक एमपी है, क्या नाम है जो गाना गाते हैं,
0: मनोज तिवारी
1: अभी चुनाव के दौरान भरत तिवारी के लोगों को लाकर सम्राट चौधरी से मिलाया, 50 लाख रुपए का परिवार को लालच दिया। आप जरा अंदाजा लगाइए न्याय का मतलब क्या है। कैमरे पर हम लोगों ने कहा है कि न्याय का मतलब है गृह विभाग की भूमिका की जांच, न्याय का मतलब यह है कि एसटीएफ के जिन लोगों ने गोली चलाई उनसे ये पूछा जाए कि आपको गोली चलाने का आदेश किसने दिया है। चुनाव के दौरान दिल्ली का सांसद आता है, उस परिवार को जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त स्थिति में है उनको लाकर सम्राट चौधरी से मिलाता है वोट के लिए। अब मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं, मनोज तिवारी आओ और उस परिवार को न्याय दिलवाओ, और अगर नहीं दिलवाओगे तो ये ढोंग करना, गाना गाना और बिहार में आकर वोट मांगना बंद करो। बिहार दिल्ली नहीं है, यहाँ जनता दौड़ा कर मारेगी, अगली बार वोट मांगना छोड़ दो, घुस नहीं पाओगे बिहार में।
0: सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग आप क्यों कर रहे हैं?
1: मैं इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा के नेतृत्व को आग्रह कर रहा हूँ कि सर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया है, बड़े आशा से वोट दिया है, लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं, सर आप प्लीज ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए जो बिहार में शिक्षा और रोजगार ला दे, कम से कम पलायन बंद हो, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो, बिहार बहुत हो गया अनाज की राजनीति, बहुत हो गया धर्म और जात की राजनीति, बिहार की चिंता कीजिए। सम्राट चौधरी दिल्ली बैठे बैठ के बिहार के लिए ले आए पैकेज, ये घोषणा करे कि हर प्रखंड में, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हर प्रखंड में एक फैक्ट्री लगेगी, अमित शाह जी ने कहा है, कहां लग रही है फैक्ट्री, 8-9 महीने बीत गए, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सम्राट चौधरी से किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए।
0: आपके अकेले कहने से तो हटा नहीं देगी बीजेपी,
1: हटाए, मान लीजिए कि परीक्षा में आप टर्मिनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आप कहिएगा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर फाइनल में भी फेल हो जाइएगा, ये अंतिम चुनाव नहीं है ना बिहार में,
0: फाइनल के
1: आगे और चुनाव होगा,
0: लोकसभा,
1: फिर भाई लोकसभा चुनाव से पहले भी चुनाव होगा, और बाई इलेक्शन होंगे और आगे चुनाव होंगे, तो अगर मोदी जी या भाजपा का नेतृत्व ये रिस्क लेना चाहता है तो ले रिस्क, सम्राट चौधरी के नाम पर रह जाए।
0: इस चुनाव में यह भी देखा गया प्रशांत जी की जो सवर्ण जाति है, फॉरवर्ड कास्ट है, उसने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से वोट दिया है, महागठबंधन से जो मुस्लिम मतदाता है उनका वो भी आपके तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ है।
1: भ्रम मत फैलाइए, जब मैं कह रहा हूं कि 400 बूथ पर जनसुराज जीता है तो क्या 400 बूथ पर सवर्ण रहते हैं, क्या 400 बूथ पर मुसलमान रहते हैं? 3 बरस से जो बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई जाति धर्म दल और नेता का अंधभक्ति छोड़ो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, 3 बरस में मैं लोगों को नहीं समझा पाया, बाकीपुर के लोग समझे, उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, और मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि पूरा बिहार बाकीपुर नहीं है, लेकिन बाकीपुर से शुरुआत हुई है। अब अगर यहां पर 1-2 साल में लोगों को उनके जीवन में परिवर्तन दिखेगा तो निश्चित तौर पर बिहार के अन्य हिस्सों में भी इसका असर आपको दिखेगा।
0: जेन ज़ी मूवमेंट।

लोगों को मच्छर ज्यादा क्यों काटते हैं? तुम्हें क्लियरली नहीं काटते हैं, ब्लड टाइप। तुम्हें पता है सिर्फ फीमेल मस्कीटोज काटते हैं, ये पता है। फैक्ट चेक करते हैं तो कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा क्यों काटते हैं, और अगर आपको भी विशाल की तरह लगता है वो आपके ब्लड टाइप की वजह से है, तो चलिए आपकी जानकारी थोड़ी ठीक कर देते हैं। फॉर दिस वीडियो वी हैव स्पोकन विद प्रोफेसर गौतम मेनन, प्रोफेसर फॉर फिजिक्स एंड बायोलॉजी एट अशोका यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। जो लोगों को लगता है कि अगर उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव है उनको मस्कीटो ज्यादा काटते हैं, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है। देखिए पहली बात आपको जानने वाली ये है कि जो मस्कीटोज होते हैं उसे फीमेल मस्कीटोज काटते हैं, एंड इसका और कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि दे नीड ह्यूमन ब्लड टू मेक एग्स। तीन चीजें फीमेल मस्कीटो को अट्रैक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट यू ब्रीद आउट, द हीट दैट्स कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी, एंड द स्मेल ऑफ योर स्किन। That's right. They can pick up on people breathing out more carbon dioxide from almost 50 meters away. Now that includes anyone who has fast metabolism, anyone who's pregnant, or anyone who's just finished a workout. Follow your body heat. Warmer skin sends out a stronger signal. So exercise, a naturally quick metabolism, or even a drink or two, alcohol, all pushes your temperature up and makes you easier to find. Then there's the smell. And in this, one particular acid stands out to them. And this has nothing to do with sweat. It actually comes from the sebum, the oil your skin produces to stay moisturized. Now, on its own, sebum barely has a scent. But mixed with your skin bacteria, it creates the exact smell mosquitoes are hunting for. So, your metabolism matters, your breathing matters, even what you're wearing matters. Red, orange, black are the colors where mosquitoes are drawn to the most. I know. Here's the part that really surprised us. A study published by the London School of Hygiene and Tropical Medicine found that genetics could actually explain nearly 67% of why mosquitoes prefer you. And how they did this study is also very fascinating. They picked up identical and fraternal twins. They took their hands, put it in a container which had all the mosquitoes. And researchers could actually track which twin the mosquito moved towards. Identical twins who shared the same DNA attracted mosquitoes at almost the same rate. But fraternal twins didn't nearly match as closely. So, अगर मच्छर की 5-star रेटिंग अवॉइड करनी है तो आपको क्या करना है? पहले तो लाइट कलर के कपड़े पहने, दूसरा कवर अप, वेयर फुल स्लीव्स, तीसरा यूज रिपेलेंट। एंड इससे होता क्या है कि मच्छर कंफ्यूज हो जाता है, दे डोंट लाइक द स्मेल एंड दे रन अवे फ्रॉम यू, सो इट एक्चुअली वर्क्स। और फिलहाल के लिए ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्पेशली उस इंसान के साथ जो हमेशा यू नो

ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही है। आपको यदि ध्यान हो तो जनवरी में जकरबर्ग ने खुद से ही स्टेटमेंट दिया कि 2024 का चुनाव जो है हार गए। अब मुझे लगा कि 2014 में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे, 2019 में भी थे, 2024 में थे, तो कौन हार गया? लेकिन COVID-19 के कारण हार गए और बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है। और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए।

0: वेलकम बैक. पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक. मेनी से इट्स वर्चुअली अ सिविल वॉर इन बलूचिस्तान बिटवीन बलूच फ्रीडम फाइटर्स एंड पाकिस्तानी फोर्सेस. इन खैबर पख्तूनख्वा देयर इज वन अटैक आफ्टर द अदर ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस विद पश्तूनस राइजिंग फॉर देयर राइट्स. There's massive trouble in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Pakistan-occupied Gilgit and Baltistan, where elections are being rigged in favor of PMLN, Pakistan Muslim League Nawaz, and the allegation comes from Bilawal Bhutto Zardari of Pakistan People's Party. But there is also this uncivil war between Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif and Pakistan's Interior Minister Mohsen Naqvi. They're both sniping at each other. They both belong to the same party. The Home Minister and the Defense Minister of Pakistan are at war in a month where more than 200 Pakistanis, including 120 Pakistani security forces, were massacred in this civil war. The situation is alarming. Now, Mohsen Naqvi, Interior Minister, he's made a public statement. He says he's going to give details of the biggest scandal, biggest corruption scam in Pakistan that involves judges, higher judiciary, members of parliament, lawmakers and bureaucrats in Pakistan, a scam that's been on for over 20 years. He said the system in Pakistan has collapsed, virtually saying Pakistan has collapsed and a new order is required. Many interpret this as paving the way for Asim Munir, the all-powerful Field Marshal of Pakistan, Chief of Defense Forces of Pakistan, Chief of Army Staff of Pakistan. Now he wants to take over as Sadr-e-Riyasat of Pakistan, which is the President of Pakistan. Khwaja Asif actually shot back. Again, same party, PMLN, Defense Minister of Pakistan. He told the Interior Minister of Pakistan, Mohsen Naqvi, to begin a revolution, start from your own ministry. He questioned, why is he speaking outside the government instead of raising these issues within the cabinet? He also said, if Naqvi truly wants a reform, he should fix his own institution, whether it's the Interior Ministry or Pakistan Cricket Board, where he serves as the chairman. Listen in.
1: देखिए, मैंने अपनी जाती राय का इजहार किया है और मैं नॉर्मली ना करता, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने जो अपने फरमूदात जो है जारी किए ना, तो मेरा हक बनता था या मेरा फर्ज बनता था कि मैं रिकॉर्ड जो है स्टेट करूं. वो कभी किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, वो कभी किसी असेंबली के इजलास में कम अज कम मैंने नहीं देखा.
2: दो तीन दफा देखा होगा, किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए.
1: मैंने एक दो दफा देखा उनको, या दो तीन दफा देखा होगा.
2: ओके,
1: तो जो पार्लियामेंट में जो है 5-6-7 दफा देखा होगा. मैं हो सकता है मेरा मैं ना हूँ, तो ज्यादा दफा आए हूँ, 2-4-5 दफा ज्यादा आया हूँ. आप असेंबली का रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरी भी तस्वीर हो जाएगी, आपका रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो जाएगा कि असेंबली में कितनी दफा आए हैं और कैबिनेट में कितनी दफा आए हैं. दो तो ये होगी.
0: Imagine a civil war in a country between the defense minister of the country and the home minister of the country, a rather uncivil war. But what should one make of this war? And is it endgame Shahbaz Sharif? Because I want you to listen in to Bilawal Bhutto Zardari, the chief of Pakistan People's Party, saying, tick tock, tick tock, tick tock. Hear the clock. The countdown has begun. Listen in.
3: और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है, मुसर इतना, क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने. टिक टॉक, टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है.
0: टिक टॉक, टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू. पाकिस्तान इज अ जोक. व्हाट शुड वन मेक ऑफ रिपोर्ट्स दैट आसिम मुनीर, द फील्ड मार्शल who's facing fire on multiple fronts from POJK to Balochistan, he wants to split Pakistan from the current four provinces, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh, and of course Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Pakistan-occupied Gilgit, Baltistan. He wants to split them into multiple provinces, at least 12, each into three and then multiple more. Why? Because one, he wants to be Sadr-e-Riyasat. Two, he says he wants better administration. But three, analysts say he wants to break subnationalism, the Pashtun pride, the Baluch pride, the Sindhi pride. He wants to just destroy it. Joining me from Pakistan is Arzu Kazmi. She joins us from Islamabad. Sandeep Unnithan is senior journalist. Arzu, There are reports that multiple containers have been put on the streets of Islamabad. ये जब कंटेनर आते हैं क्या 111 ब्रिगेड भी अब आने वाली है?
4: गौरव, ये कंटेनर्स तो अक्सर ही इस्लामाबाद में रहते हैं और अब हम इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी भी कह सकते हैं। जैसे ही कोई प्रोटेस्ट या कुछ होने का इनको डर होता है तो ये कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज यहाँ पर असेंबली भी है, यहीं पर पार्लियामेंट भी है और साथ ही साथ जो है एम्बेसीज भी हैं, तो इसलिए भी ये कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। और इस वक्त जो बिलावल भुट्टो का आपने क्लिप दिखाया तो डेफिनेटली बिलावल को कहीं से इशारा हुआ होगा, उनको किसी ना किसी ने कहा होगा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और तभी वो ये बात कर रहे हैं। और यही बात मैं मोहसिन नकवी के लिए भी कहूंगी।
0: टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू, इसका मतलब क्या है?
4: इसका मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शायद बैकपैक हो गया है और उनको हटाया जाएगा या उनकी गवर्नमेंट को हटाया जाएगा। बिलावल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, मोहसिन नकवी भी जो कह रहे हैं कि जी एक नया सिस्टम लाया जाएगा, तो उनको भी कहीं से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही कहा गया होगा। वरना कुछ दिन पहले तो जो GDISPR साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा था कि जी पाकिस्तान से हमारे पड़ोसी जल रहे हैं, पाकिस्तान से भारत और अफगानिस्तान जल रहे हैं, ये बात की गई थी ISPR की तरफ से। तो अब अचानक से पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो क्लैप्स कैसे कर गया है, तो यहाँ कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और बिलावल तक ये बात पहुंच रही होगी। शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू है।
0: टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू। संदीप, you know, whenever there's action in Pakistan, and we've seen that long history, the 111 brigade or the coup brigade of Pakistan gets very active between Islamabad and Rawalpindi. Interior Minister Mohsin Naqvi actually paving the way for his brother-in-law, Field Marshal Asim Munir, to take over as Sadr-e-Riyasat. Is that what you're picking up?
5: Well, Gaurav, the Field Marshal Munir is the most powerful military leader in the history of Pakistan. He's only the second field marshal. He's the first chief of defense forces. God knows what other titles he's going to accumulate in the next couple of years. Now, the fact is that
0: perhaps
5: the 27th Amendment is what brought him to power, Gaurav, and it literally sealed his dominance over the Pakistani system. And that's why you have the hybrid system. So I don't think that 111 brigade is needed anymore, Gaurav. They'll be staying in the barracks because Asim Munir's power is cemented through constitutional authority. And now, as you mentioned, the 28th Amendment is possibly one of the biggest tectonic shifts in Pakistan's history. This talk of breaking up the four provinces into 12 provinces to destroy what they think is, Pashtun subnationalism, Baloch subnationalism, all of this. And possibly Munir elevating himself to an executive presidency of the kind that we've seen under General Musharraf. All of this has been tried in the past, Gaurav. You've seen in the 70s, you had the one unit system when they wanted to deny the Bengalis of East Pakistan representation. They came up with this one unit system. And today, they want to go back to breaking up the country into multiple things. It's all distracting, taking away from the fact that there is civil war inside Pakistan. The minorities there, the Baloch and the Pashtuns, are up in arms. This is all a very elaborate charade, a political charade to take attention away from the crisis that Pakistan is currently undergoing, Gaurav.
0: आरजू, क्या असल में बलूचिस्तान को नॉर्थ बलूचिस्तान, सेंट्रल बलूचिस्तान, सदर्न बलूचिस्तान, मतलब हर प्रोविंस को, हर सूबे को तीन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा? ये जो प्लान डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान की मीडिया में या उनके एनालिस्ट द्वारा, खैबर पख्तूनख्वा भी नॉर्थ, सेंट्रल, सदर्न, खैबर पख्तूनख्वा, यही सब पंजाब और सिंध में, ऐसा करने की क्या तैयारी हो रही है?
4: गौरव, बलूचिस्तान को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पंजाब का डेफिनेटली ये प्लान बहुत अरसे से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि पंजाब को डिवाइड किया जाएगा, पंजाब में से और प्रोविंसेस निकाले जाएंगे, क्योंकि अकेले नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में है या उनकी पार्टी के कंट्रोल में अगर है तो इनको सूट नहीं करता। लेकिन उसके लिए अभी तक लोग तैयार नहीं हुए हैं, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। ये काम इनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, ये इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जो एक सिस्टम जिसकी बात की जा रही है, अगर आपको याद हो गौरव, तो इमरान खान के वक्त भी यही कहा गया था कि इमरान खान को प्रेसिडेंट बना देंगे और 10 साल तक ये सिस्टम चलता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो इमरान खान के साथी थे उनको भी शायद यही लगने लगा था कि अब ऐसा ही होगा, और उन्होंने वही उसी तरीके से लोगों से बात करनी शुरू कर दी थी कि अब तो कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वक्त भी अगर ये कोशिश भी करेंगे तो अब ये जनरल मुशर्रफ का जमाना नहीं है, ना ही ये जियाउल हक का जमाना है। तो ये अगर ये सोचकर चलेंगे कि यहाँ पर वही सिस्टम लाएंगे और पब्लिक रखेगी या चल पाएगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा।
0: तो अगर आप कह रही हैं, जैसा आपने कहा कि शाहबाज शरीफ का या पीएमएलएन का बोरिया बिस्तरा पैक होना लगभग तय माना जा रहा है पाकिस्तान में, ऐसी हिंट्स आ रही हैं, अगर ऐसा होता है तो कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? मोहसिन नकवी या बिलावल भुट्टो जरदारी, या आसिम मुनीर को अगर सेफ पैसेज देंगे जरदारी साहब को तो बेटे को भी साथ जाना पड़ेगा?
4: देखिए, यहाँ म्यूजिकल चेयर चलती है, पहले इमरान खान, फिर पीएमएलएन, और अब पीपल्स पार्टी की बारी लगता है कि है। और बिलावल साहब जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वैसे तो मोहसिन नकवी को जो आसिफ अली जरदारी है उन्होंने बेटा बना रखा है, तो अगर वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाए तो फिर कौन से वाले बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाए, ये एक सवाल है। और यकीनन मोहसिन नकवी इस वक्त बिलावल से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं।
0: मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो जरदारी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान में पूरा अनरेस्ट इस समय चल रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि जब डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आपस में ऐसे यहां पर मतलब टीवी पर ही लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं 21 साल से करप्शन चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया, क्रिकेट में इतना करप्शन है, 200 पाकिस्तानी मर गए हैं जुलाई के महीने में, ऐसी रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आ रही हैं जिसमें 115 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस समय? हर प्रोविंस में एक तरह से ऐसी खबर आ रही है कि आग सी लगी हुई है।
4: बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं फिर भी डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट जरूर उनकी करती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो सच बोल देते हैं, जो कि मोहसिन नकवी ने अभी तक नहीं किया है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया पर हो या कहीं भी, वो कोई ना कोई बात कर जाते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस वक्त गवर्नमेंट जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, चाहे एजाज सैयद हों, चाहे असद तूर या दूसरे लोग, उनको नोटिसेस जा रहे हैं, उनको उनके खिलाफ जो है केसेस बनाए जा रहे हैं कि कौन बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। चाहे इमरान खान का नाम ले लीजिए, चाहे जो कुछ कंट्री में हो रहा है उसके लिए अगर बात करें, तो उन लोगों को अभी तक नोटिसेस जाने शुरू हो चुके हैं, एंड आई डोंट नो के मेरे दरवाजे तक कब आते हैं।
0: आप सुरक्षित रहिए। एंड संदीप, दिस डज पॉइंट टू पाकिस्तान वर्चुअली बीइंग एट ब्रेक पॉइंट।
5: There's every single manner of crisis that Pakistan is going through now. There is an economic crisis. There is an internal security crisis. There is the only area that they don't seem to have a crisis is external, because Asim Munir has bought some time. He's trying to mediate that war between Iran and the United States. Though it doesn't
0: except
5: seem to
0: Trump
5: be going
0: did not name him
5: right
0: just now.
5: Now
0: as the mediator,
5: Trump
0: and that's been seen as a loss
5: him.
0: Of face for
5: big,
0: Pakistan.
5: I think Trump is losing his patience with Munir as well. He's not delivering the Iranians to him the way that he had promised. So if that also, it flips, then Pakistan is in serious trouble, because externally they need that $10 billion from the United States. If they don't deliver the Iranians as part of the peace deal, they're not going to get any money for this. So literally, Asim Munir has enormous stakes in the game that's going on right
0: and
5: now.
0: And this is where India needs to be very careful, Sandeep, because each time Pakistan is in trouble and it's on the verge of breaking up, to unite Pakistan, they try and attack India, because that's the only way they think that they can stay united when they say they've attacked a kafir Hindu country. This is where India needs to be very, very careful. We'll be tracking that story very closely, and Pakistan should not forget there's been one Operation Sindoor and there can be many more. Arzu and Sandeep, many thanks. We'll be tracking that story closely. That is all I have for you on India First this evening. Many thanks for watching.

0: ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही है। आपको यदि ध्यान हो तो जनवरी में जकरबर्ग ने खुद से ही स्टेटमेंट दिया कि 2024 का चुनाव जो है हार गए। अब मुझे लगा कि 2014 में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे, 2019 में भी थे, 2024 में थे, तो कौन हार गया? लेकिन COVID-19 के कारण हार गए और बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है। और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Starting with some breaking news, Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Pravar has now responded to the mute doll jive that's been taken at her by the Congress party. Sunetra Pravar says that she will give a befitting reply when the time comes. She called the Congress, she told the Congress that the time will come when she will give a befitting reply. This comes after the Congress had called Sunetra Pravar a mute doll on social media platform X. NCP staged a protest against the Congress party over the remark. Maharashtra Chief Minister Fadnavis, Deputy Chief Minister Shinde have already condemned the remark. Okay, then you heard there from the Maharashtra Deputy Chief Minister. She may not have been in public light in recent times, and that's exactly what probably has gone against her, but we'll get more details on that. For the time being, the Congress party has singled her out and called her a mute doll. Remember, this comes at a time when there's been various issues as well that have been bothering the state, that have been a cause of concern as well. And you've seen Devendra Fadnavis do all the firefighting, but somewhere you realize that she's not been around just as much. Let's now shift to focus to the state of Tamil Nadu, where the leader of opposition, Udayanidhi Stalin, was arrested after a complaint was filed by a ruling TVK government. The ruling TVK government, beg your pardon, accused him of making misogynistic remarks. Here's a look at how the drama unfolded.
1: வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறாரு. அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன, திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்ன
2: Udayanidhi Stalin's remark allegedly loaded with sexual innuendo targeting actor Trisha Krishna, who is close to Chief Minister Joseph Vijay, may have opened a new chapter in Tamil Nadu politics. Within hours of the statement by the leader of the opposition at a protest rally in Tanjavur, an FIR was filed. Tuesday morning, the police came knocking on Udayanidhi's doors. The police, who had reached the DMK leader's residence in Chennai armed with a warrant, were stopped by his wife Kirutika Udayanidhi and party leader Ma Subramaniam. After a brief file, the police got access to Udayanidhi. He was led away in the police vehicle.
3: Hello. also being pulled out by aggregators who are trying to pull away the barricade.
2: Udayanidhi denied making any comment on Trisha and accused Vijay of vendetta politics.
4: Did you say something wrong yesterday? You decide. You saw the speech. Did I say something wrong? Did I say something, anybody's name except the CM's name?
3: No. Why do you think this is happening?
4: This is just revengeful. Sorry? Let the court decide.
2: The arrest sparked DMK protests in multiple cities. Vijay's effigies were burnt. The TVK retaliated with counter-protests.
5: Completely, once again, it's a wake-up call for all Tamil Nadu people that, complete part of the people who have voted for DMK, and it's again, once again, it's a wake-up call that those people who just want to begin and think once again after this 5 years of...
2: The DMK rushed to Madras High Court to secure bail for Udayanidhi, where the government informed the court that the leader of opposition would not be sent to jail. The High Court directed the police to release Udayanidhi after questioning. Dramatic 24 hours that saw a sexist jibe, an arrest and statewide protest could mark the start of a bitter war in Tamil Nadu's politics. The fight between Vijay and Udayanidhi is now more than just political. It just got personal. With Pramod Madhav and Anaga Keshav, Bureau Report, India Today.
0: Now, this is a controversy that has gone far beyond the confines of Tamil Nadu. Here's a look at how different political parties reacted to Udayanidhi's talent's comments.
6: He has done his duty. For that, today they are arresting means. And that too, in spite of the court telling them not to arrest up to 12 o'clock. They have arrested him. This amounts to contempt of court. So, there is no law and order. There is no rule of law in Tamil Nadu. Everything has gone. For this, they will have to pay a very big amount for this. Definitely, people will not tolerate all this nonsense. Definitely, in the days to come, this government will face the consequence.
7: Did he say one word about Trisha? No. He did not even mention the name. But that apart, he did not talk about that actress. His speech was very clean, very clear. His attack was on the Chief Minister for his failures. He listed out his failures. That's all. And he said that we will stand by the farmers. Beyond that, there is nothing derogatory in his speech or nothing insulting in his speech. That is what when I listened to his speech, I couldn't see anything insulting.
8: This should be stopped. It should be condemned unequivocally. This cannot be accepted. I didn't expect from him such a derogatory remarks. I feel very upset and shocked. I'm strongly condemned this statement. People in politics, especially holding high offices, as a legacy should be very careful in politics what they are.
9: Udayanidhi, you know, he's the leader of the opposition over there, and like, he has conducted himself in a very bad, then he has brought disrepute to his organization also, and nobody is above the law. And the law states, I mean, whoever indulges in such an act which outrages the modesty of a woman, when they should be, you know, the corrective action should be taken.
0: The Jharkhand students' protest has now entered the 11th day. The hunger strike is growing, an assembly gherao has already been announced, and the agitation is only getting stronger by the minute. But alongside the students' demands, another debate is now gathering steam. Is politics deciding who gets support and who gets silence? Take a look at this report.
10: The Jharkhand students' movement isn't slowing down. It's only getting bigger. The protest over alleged recruitment scams has now entered day 11, with Ranchi's Jaipal Singh Munda Stadium fast becoming the state's own Jantar Mantar. Students continue to demand a CBI probe into alleged irregularities in Public Service Commission and Staff Selection Commission recruitments, fresh examinations, and action against those behind the alleged paper leaks.
11: CID ho gaya. उस पर विश्वास हो ही नहीं पा रहा, तो सरकार के ऊपर क्या ही विश्वास करके करेंगे, होगा तो ही विश्वास कर पाएंगे, क्या विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार तो सीआईडी को जांच करने दे देता है, सीआईडी तो जांच करके देता है, सरकार का वो तोता है, जो चाहेगा वही करवाएगा। हम लोग को एक ही उम्मीद है कि सीबीआई को सौंप दे ये चीज।
12: हमें सीआईडी पे एक्चुअली भरोसा नहीं है,
13: नहीं है,
12: नहीं सीआईडी पे नहीं है, क्योंकि इनकी जो जांच एजेंसी है ये निष्पक्ष तरीके से जांच कर ही नहीं रही है।
13: लोग आ रहे हैं और ये सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है, और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है, और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे।
10: The government is considering a high-level committee, but protesters say they don't trust a CID probe. The agitation is also intensifying. One protest tent continues to be led by student leader Devendranath Mahato, who remains on an indefinite hunger strike. A second tent has now begun its own fast, with five more students joining the hunger strike. Food and supplies are pouring in from across Jharkhand as public support for the movement grows. The protesters have now announced their next course of action, an assembly gherao on August 10th during the monsoon session, along with a march on Shibu Soren's first death anniversary. Meanwhile, the BJP has sharpened its attack.
14: पिछले 15-20 दिन से लगातार झारखंड में धूप गर्मी बरसात सबों में हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं जा रहा है, और सीबीआई की इंक्वायरी करा देने में क्या परेशानी है।
10: Responding to the growing pressure, the government assured that they are working towards a solution.
15: जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है।
10: 11 डेज इन, द टेंट्स आर मल्टीप्लाइंग, द क्राउड्स आर स्वेलिंग एंड द एजिटेशन इज गैदरिंग पॉलिटिकल हीट। द क्वेश्चन नाउ इजंट वेदर द मूवमेंट इज ग्रोइंग, बट हाउ लॉन्ग द गवर्नमेंट कैन अफोर्ड to wait before responding. With Satyajit Kumar, Bureau Report, India Today.
0: A day after his massive win over the BJP in their stronghold of Bankipur, newly elected Bihar MLA Prashant Kishore exclusively spoke with India Today. He explains the main reason which could have helped him topple the ruling party in their den. Take a look.
16: चुनाव के पहले भी हमने आपसे बात की थी, आपने इसमें एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की वो था जनमत संग्रह, और आप ये कह रहे थे कि भाई ये एक रेफरेंडम हो सकता है इसमें मौजूदा सरकार पर, सम्राट चौधरी पर, और आप ये भी कह रहे थे कि भाई एक वोट या एक विधायक जीत जाएगा तो सरकार में कुछ नहीं होने वाला है, एक विपक्ष भी जीत जाएगा तो कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको ये नैरेटिव जो है लोगों के घर कर गया दिल में भाया?
17: नहीं देखिए, लोकतंत्र है और जिन लोगों ने भाजपा को एनडीए को वोट दिया उसमें एक प्रमुख मुद्दा प्रधानमंत्री ने आकर खुद बनाया कि जंगल राज नहीं लौटना चाहिए, लेकिन उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को आपने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और लोकतंत्र में यह संभव है कि जो पार्टी जीतकर आए उसका उसका नेता जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनाएगा तो जनता के पास भी ये अवसर है अपना मत देने का। तो पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री यहां बना है और लोगों ने जब वोट दिया तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट मोदी जी को मैसेज दिया है ये लोगों ने, क्योंकि ये भाजपा के विरोधी लोग नहीं है, ये भाजपा के समर्थक हैं। गौर करने वाली बात है कि बांकीपुर में जिन लोगों ने वोट दिया है जनसुराज को, ये ज्यादातर लोग भाजपा के समर्थक लोग हैं। इन्होंने क्यों वोट दिया? इसलिए वोट दिया क्योंकि उनको भाजपा का अहंकार स्वीकार्य नहीं है, उनको भाजपा का ये वक्तव्य नहीं स्वीकार्य है कि कुत्ता बिल्ली को भी हम देंगे तो भी तुमको वोट देना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर उनको ये बात नहीं स्वीकार्य है कि जिस बिहार को जंगल राज से मुक्त करने के नाम पर आपने वोट लिया उसी जंगल राज के किसी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों के पास मोदी जी को फोन करने का अवसर तो है नहीं, लोग मोदी जी से मिलकर तो बात नहीं कर सकते हैं, लोगों के पास क्या अवसर है? वोट का अवसर है। तो हमने लोगों को बताया कि भाई अगर आप मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व आपको स्वीकार्य नहीं है तो यही मौका है आपके पास, आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, मोदी जी को खबर होगी। और आज मैं समझता हूं कि मोदी जी को खबर हुई है कि 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, सारे समीकरण ध्वस्त है। जब ये वो भाजपा है जो कहती हम बूथ जीतते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, शक्ति केंद्र बनाते हैं, कहां गया सब?
0: Now, the women boxers from India made the nation proud with their scintillating performances in the recently concluded Commonwealth Games. Five of them have returned home from Glasgow with the gold medal. As they touched down in the national capital, my colleague Nikhil Naz caught up with them. Listen in.
18: With me are the golden girls of Indian boxing because they came up with a five-star performance at the Commonwealth Games. Five gold medals with me. Sakshi here, Jasmine, I've got Priya, Arundhati and Preeti. सबसे पहले अरुंधति मैं आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि बॉक्सिंग का जो खेल है जब हम देख रहे होते हैं हमें तो डर लगता है रोना आता है पर ये जब बॉक्सिंग करती है ये हंसती है ना सिर्फ रिंग में जाने से हंसती है जब मुक्के खाती है तब भी हंसती है वो कैसे होता है
19: सर एक्चुअली मुझे लगता है कि हम ट्रेनिंग सेशंस जो करते हैं काफी डिफिकल्ट होते हैं और हर स्वेट ऐसा है कि बहुत इमोशंस बहुत एंगरनेस का होता है तो अभी पूरा मेहनत हो गया अब वो 9 मिनट्स हैं तो आई हैव टू एंजॉय दिस बिकॉज मैंने उसके लिए काफी किया है और वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं उस पोडियम पे जाके 9 मिनट्स खेल पा रही हूँ तो मैं उसको काफी एंजॉय करती हूँ
18: वो नजर भी आता है जब उनके मुक्के पड़ भी रहे होते तो भी हंसती है और जब मारती है तब भी हंसती है ये तो हुई हंसने की बात लेकिन मेरे साथ है साक्षी जिन्होंने अपनी ओपोनेंट को रुलाया था रो रही थी वो एंड में 71 बाउट्स उन्होंने खेले थे एक भी बाउट नहीं हारा था और आपने उनको हरा के रुलाया कैसा लगा था
20: मतलब मुझे अच्छा लगा मेरे लिए लेकिन उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था वो मतलब पोडियम तक रो ही रही थी तो मैंने उसको बोला कि मत रो अभी पूरी तेरी वो पड़ी आगे लाइफ मतलब आगे और मेहनत कर हम मतलब रो मत प्लीज
18: तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बॉक्सर्स के बीच होता है सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला गोल्ड जीतने के बाद चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या कोई आपके ओपोनेंट ने दिया हो या फैन ने क्या था
20: मेरे लिए सबसे बेस्ट था मैंने तब देखा कि आरसीबी ने मेरा पोस्ट डाला है तो मैं विराट कोहली की फैन हूँ तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी
18: इनकी तस्वीर भी है विराट कोहली के साथ पिन टू हर इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपके लिए
21: मुझे इंस्टाग्राम पर एक कमेंट आया था जब आप रिंग में खेलते हो तो जो आपका खेलने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है कूल बिल्कुल
18: वो तो है के साथ चार और फेलो मेडलिस्ट हैं अगर आपको एक क्वालिटी इनमें से किसी से भी एक से लेनी हो तो किससे लेंगे और क्या लेंगे
20: Calmness.
18: Okay. आप
22: मैं साक्षी से अग्रेशन
18: ओके आप
23: मैं जैस्मिन दीदी से कूल माइंड
18: कामनेस इनकी कामनेस बड़ी पॉपुलर है
24: आई टेक फ्रॉम प्रीति हर कामनेस
18: प्रीति भी काम है हाँ
25: आई थिंक हम सबका ही कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है तो मैं सबसे लूंगी लाइक साक्षी शी हैज गुड स्पीड जैस्मिन कामनेस एंड शी इज लाइक ग्रेट even if she lose first round then she come back stronger in next round and she's like great comeback even after injury so really inspiring yeah
18: okay.
25: so everyone has something good in
18: one quality from everyone acha ab main yahan se start karta hu aap जब घर जाओगे क्योंकि आपका वेट कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वेट मेंटेन करना है घर पहुंचने वाले हैं सबसे पहली चीज आप क्या खाओगे घर जाते
25: मम्मी के हाथ का खाना
18: क्या कुछ स्पेशल
25: आई थिंक बहुत टाइम से मिस कर रही हूँ मैं पहले कैंप में थे तो जो भी वो बनाएंगे मैं लाइक बहुत एक्साइटेड हूँ वो खाने के लिए
24: हार्डली मिसिंग राजस्थानी ट्रेडिशनल डिश दाल बाटी
18: दाल बाटी हाँ
24: मिठाई
18: घेवर
24: घेवर
18: घेवर का सीजन भी आ गया है
24: सीजन
23: चूरमा
25: सारा खाना लेकिन स्पेशली मैंगो शेक क्योंकि मैंगो का सीजन खत्म होने वाला है
18: लास्ट कुछ बचे हैं तो आपके आसान से आखिरी में आप लोग सब जेन जी हो मैं जेन एक्स हूँ बिल्कुल ही अलग जनरेशन का जेन जी का जमाना है आपकी जनरेशन को क्या चीज अलग बनाती है इससे पहले वाली जनरेशन से आपको लगता है
25: स्मार्टनेस बोलूंगी मैं हम मतलब स्मार्टली चीजों को करते हैं और हार्डवर्क
23: वही कि हमें थोड़ा मतलब नॉलेज और एजुकेशन थोड़ा और ज्यादा बेटर सिचुएशंस में मिला है तो हम ज्यादा नॉलेजेबल हैं
24: पहले से हम ज्यादा टेक्निकल हो चुके हैं
18: बॉक्सिंग के नजरिए से बोला बिल्कुल सही
24: वी आर मोर सोशलिस्ट
18: ओके
25: लाइक टेक्नोलॉजी वाइज चेंजेस अभी काफी स्मार्ट हो गए हैं
18: करेक्ट टेक में भी मैं मानता हूँ टेक में भी आ गए सोशलिस्ट भी हैं हम थोड़े कैपिटलिस्ट थे हमारे जमाने में बट थैंक यू वेरी मच प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एशियन गेम्स
0: That's all we had for you in this edition of news. But in case you're looking for more, do head across to the indiatoday.in website. You can also download the India Today app.
26: You are watching India Today.

ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही है। आपको यदि ध्यान हो तो जनवरी में जकरबर्ग ने खुद से ही स्टेटमेंट दिया कि 2024 का चुनाव जो है हार गए। अब मुझे लगा कि 2014 में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे, 2019 में भी थे, 2024 में थे, तो कौन हार गया? लेकिन COVID-19 के कारण हार गए और बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि उनका जो माइंडसेट वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है। और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए।

0: सर आप मार्च लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, हैवी पुलिस बैरिकेडिंग है इस वक्त आपको रोकने के लिए, पिटीशन में क्या था, क्या कहना चाह रहे थे?
1: देखिए अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका इथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन वो इथेनॉल पूरा इस्तेमाल नहीं कर सक पाता, उनके लिए वो कूड़ा है। तो ट्रंप ने मोदी जी पे दबाव डाला है और अमेरिका के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद के हमारे ऊपर E20 थोप रहे हैं। जनता E20 से परेशान है। एक तरफ जिस तरह से मोदी जी अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, पूरी दुनिया के सामने भारत का अपमान हो रहा है, और दूसरी तरफ हम E20 से परेशान हैं। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि आप अमेरिका के दबाव में मत आइए और हमें E20 से मुक्ति दिलाइए।

0: ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही। आपको यदि ध्यान हो तो जनवरी में जकरबर्ग ने खुद से ही स्टेटमेंट दिया कि 2024 का चुनाव जो है हार गए। अब मुझे लगा कि 2014 में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे, 2019 में भी थे, 2024 में थे, तो कौन हार गया? लेकिन COVID-19 के कारण हार गए और बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है। और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए।
1: सर आप मार्च लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, हैवी पुलिस बैरिकेडिंग है इस वक्त आपको रोकने के लिए, पिटीशन में क्या था, क्या कहना चाह रहे हैं?
2: देखिए अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका इथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लेकिन वो इथेनॉल पूरा इस्तेमाल नहीं कर सक पाता, उनके लिए वो कूड़ा है। तो ट्रंप ने मोदी जी पे दबाव डाला है और अमेरिका के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद के हमारे ऊपर E20 थोप रहे हैं। जनता E20 से परेशान है। एक तरफ जिस तरह से मोदी जी अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, पूरी दुनिया के सामने भारत का अपमान हो रहा है, और दूसरी तरफ हम E20 से परेशान हैं। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि आप अमेरिका के दबाव में मत आइए और हमें E20 से मुक्ति दिलाइए।

0: वेलकम बैक. पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक. मेनी से इट्स वर्चुअली अ सिविल वॉर इन बलूचिस्तान बिटवीन बलूच फ्रीडम फाइटर्स एंड पाकिस्तानी फोर्सेस इन खैबर पख्तूनख्वा. देयर इज वन अटैक आफ्टर द अदर ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस विद पश्तूंस राइजिंग फॉर देयर राइट्स. There's massive trouble in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Pakistan-occupied Gilgit and Baltistan, where elections are being rigged in favor of PMLN, Pakistan Muslim League Nawaz, and the allegation comes from Bilawal Bhutto Zardari of Pakistan People's Party. But there is also this uncivil war between Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif and Pakistan's Interior Minister Mohsen Naqvi. They're both sniping at each other. They both belong to the same party. The Home Minister and the Defense Minister of Pakistan are at war in a month where more than 200 Pakistanis, including 120 Pakistani security forces, were massacred in this civil war. The situation is alarming. Now, Mohsen Naqvi, Interior Minister, he's made a public statement. He says he's going to give details of the biggest scandal, biggest corruption scam in Pakistan that involves judges, higher judiciary, members of parliament, lawmakers and bureaucrats in Pakistan, a scam that's been on for over 20 years. He said the system in Pakistan has collapsed, virtually saying Pakistan has collapsed and a new order is required. Many interpret this as paving the way for Asim Munir, the all-powerful Field Marshal of Pakistan, Chief of Defense Forces of Pakistan, Chief of Army Staff of Pakistan. Now he wants to take over as Sadr-e-Riyasat of Pakistan, which is the President of Pakistan. Khwaja Asif actually shot back. Again, same party, PMLN, Defense Minister of Pakistan. He told the Interior Minister of Pakistan, Mohsen Naqvi, to begin a revolution, start from your own ministry. He questioned, why is he speaking outside the government instead of raising these issues within the cabinet? He also said, if Naqvi truly wants a reform, he should fix his own institution, whether it's the Interior Ministry or Pakistan Cricket Board, where he serves as the chairman. Listen in.
1: देखिए, मैंने अपनी जाति राय का इजहार किया है और मैं नॉर्मली ना करता, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने जो अपने फरमूदात जो है जारी किए ना, तो मेरा हक बनता था या मेरा फर्ज बनता था कि मैं रिकॉर्ड जो है स्टेट करूं. वो कभी किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, वो कभी किसी असेंबली के इजलास में, कम अज कम मैंने नहीं देखा.
2: दो तीन दफा देखा होगा, किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए.
1: मैंने एक दो दफा देखा उनको, या दो तीन दफा देखा होगा.
2: ओके,
1: तो जो पार्लियामेंट में जो है 5-6-7 दफा देखा होगा. मैं, हो सकता है मेरा, मैं ना हूँ, तो ज्यादा दफा आए हूँ, 2-4-5 दफा ज्यादा आया हूँ. आप असेंबली का रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरी भी तस्वीर हो जाएगी, आपका रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो जाएगा कि असेंबली में कितनी दफा आए हैं और कैबिनेट में कितनी दफा आए हैं. दो तो ये होगी.
0: Imagine a civil war in a country between the defense minister of the country and the home minister of the country, a rather uncivil war. But what should one make of this war? And is it endgame Shahbaz Sharif? Because I want you to listen in to Bilawal Bhutto Zardari, the chief of Pakistan People's Party, saying, tick tock, tick tock, tick tock. Hear the clock. The countdown has begun. Listen in.
3: और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है मुसरे रखना, क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने. टिक टॉक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है.
0: टिक टॉक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू. पाकिस्तान इज अ जोक. व्हाट शुड वन मेक ऑफ रिपोर्ट्स दैट आसिम मुनीर, द फील्ड मार्शल who's facing fire on multiple fronts from POJK to Baluchistan, he wants to split Pakistan from the current four provinces, Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh, and of course Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Pakistan-occupied Gilgit, Baltistan. He wants to split them into multiple provinces, at least 12, each into three and then multiple more. Why? Because one, he wants to be Sadr-e-Riyasat. Two, he says he wants better administration. But three, analysts say he wants to break subnationalism, the Pashtun pride, the Baluch pride, the Sindhi pride. He wants to just destroy it. Joining me from Pakistan is Arzu Kazmi. She joins us from Islamabad. Sandeep Unnithan is senior journalist. Arzu, There are reports that multiple containers have been put on the streets of Islamabad. ये जब कंटेनर आते हैं, क्या 111 ब्रिगेड भी अब आने वाली है?
4: गौरव, ये कंटेनर्स तो अक्सर ही इस्लामाबाद में रहते हैं और अब हम इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी भी कह सकते हैं। जैसे ही कोई प्रोटेस्ट या कुछ होने का इनको डर होता है तो ये कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज यहाँ पर असेंबली भी है, यहीं पर पार्लियामेंट भी है और साथ ही साथ जो है एम्बेसीज भी हैं, तो इसलिए भी ये कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। और इस वक्त जो बिलावल भुट्टो का आपने क्लिप दिखाया, तो डेफिनेटली बिलावल को कहीं से इशारा हुआ होगा, उनको किसी ना किसी ने कहा होगा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और तभी वो ये बात कर रहे हैं। और यही बात मैं मोहसिन नकवी के लिए भी कहूंगी।
0: टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू, इसका मतलब क्या है?
4: इसका मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शायद बैकपैक हो गया है और उनको हटाया जाएगा या उनकी गवर्नमेंट को हटाया जाएगा। बिलावल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, मोहसिन नकवी भी जो कह रहे हैं कि जी एक नया सिस्टम लाया जाएगा, तो उनको भी कहीं से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही कहा गया होगा। वरना कुछ दिन पहले तो जो GDISPR साहब जो हैं, उन्होंने क्या कहा था कि जी पाकिस्तान से हमारे पड़ोसी जल रहे हैं, पाकिस्तान से भारत और अफगानिस्तान जल रहे हैं, ये बात की गई थी ISPR की तरफ से। तो अब अचानक से पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो क्लैप्स कैसे कर गया है, तो यहाँ कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और बिलावल तक ये बात पहुंच रही होगी। शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू है।
0: टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू। संदीप, you know, whenever there's action in Pakistan, and we've seen that long history, the 111 brigade or the coup brigade of Pakistan gets very active between Islamabad and Rawalpindi. Interior Minister Mohsin Naqvi actually paving the way for his brother-in-law, Field Marshal Asim Munir, to take over as Sadr-e-Riyasat. Is that what you're picking up?
5: Well, you know, Gaurav, the Field Marshal Munir is the most powerful military leader in the history of Pakistan. He's only the second field marshal. He's the first chief of defense forces. You know, God knows what other titles he's going to accumulate in the next couple of years. Now, the fact is that
0: perhaps
5: the 27th Amendment is what brought him to power, Gaurav, and it literally sealed his dominance over the Pakistani system. And that's why you have the hybrid system. So I don't think that 111 Brigade is needed anymore, Gaurav. They'll be staying in the barracks because Asim Munir's power is cemented through constitutional authority. And now, as you mentioned, the 28th Amendment is possibly one of the biggest tectonic shifts in Pakistan's history. This talk of breaking up the four provinces into 12 provinces to destroy what they think is, Pashtun subnationalism, Baloch subnationalism, all of this. And possibly Munir elevating himself to an executive presidency of the kind that we've seen under General Musharraf. All of this has been tried in the past, Gaurav. You've seen in the 70s, you had the one unit system when they wanted to deny the Bengalis of East Pakistan representation. They came up with this one unit system. And today, they want to go back to breaking up the country into multiple things. It's all distracting, taking away from the fact that there is civil war inside Pakistan, the minorities there, the Baloch and the Pashtuns are up in arms. This is all a very elaborate charade, a political charade to take attention away from the crisis that Pakistan is currently undergoing, Gaurav.
0: आरजू, क्या असल में बलूचिस्तान को नॉर्थ बलूचिस्तान, सेंट्रल बलूचिस्तान, सदर्न बलूचिस्तान, मतलब हर प्रोविंस को, हर सूबे को तीन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा? ये जो प्लान डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान की मीडिया में या उनके एनालिस्ट द्वारा, खैबर पख्तूनख्वा भी नॉर्थ, सेंट्रल, सदर्न, खैबर पख्तूनख्वा, यही सब पंजाब और सिंध में, ऐसा करने की क्या तैयारी हो रही है?
4: गौरव, बलूचिस्तान को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पंजाब का डेफिनेटली ये प्लान बहुत अरसे से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि पंजाब को डिवाइड किया जाएगा, पंजाब में से और प्रोविंसेस निकाले जाएंगे, क्योंकि अकेले नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में है या उनकी पार्टी के कंट्रोल में अगर है तो इनको सूट नहीं करता। लेकिन उसके लिए अभी तक लोग तैयार नहीं हुए हैं, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। ये काम इनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, ये इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जो एक सिस्टम जिसकी बात की जा रही है, अगर आपको याद हो गौरव, तो इमरान खान के वक्त भी यही कहा गया था कि इमरान खान को प्रेसिडेंट बना देंगे और 10 साल तक ये सिस्टम चलता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो इमरान खान के साथी थे उनको भी शायद यही लगने लगा था कि अब ऐसा ही होगा, और उन्होंने वही उसी तरीके से लोगों से बात करनी शुरू कर दी थी कि अब तो कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वक्त भी अगर ये कोशिश भी करेंगे तो अब ये जनरल मुशर्रफ का जमाना नहीं है, ना ही ये जियाउल हक का जमाना है। तो ये अगर ये सोच कर चलेंगे कि यहाँ पर वही सिस्टम लाएंगे और पब्लिक रखेगी या चल पाएगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा।
0: तो अगर आप कह रही हैं, जैसा आपने कहा कि शाहबाज शरीफ का या पीएमएलएन का बोरिया बिस्तरा पैक होना लगभग तय माना जा रहा है पाकिस्तान में, ऐसी हिंट्स आ रही हैं, अगर ऐसा होता है तो कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? मोहसिन नकवी या बिलावल भुट्टो जरदारी, या आसिम मुनीर को अगर सेफ पैसेज देंगे जरदारी साहब को तो बेटे को भी साथ जाना पड़ेगा?
4: देखिए, यहाँ म्यूजिकल चेयर चलती है, पहले इमरान खान, फिर पीएमएलएन, और अब पीपल्स पार्टी की बारी लगता है कि है। और बिलावल साहब जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वैसे तो मोहसिन नकवी को जो आसिफ अली जरदारी है उन्होंने बेटा बना रखा है, तो अगर वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाए तो फिर कौन से वाले बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाए, ये एक सवाल है। और यकीनन मोहसिन नकवी इस वक्त बिलावल से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं।
0: मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो जरदारी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान में पूरा अनरेस्ट इस समय चल रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि जब डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आपस में ऐसे यहां पर मतलब टीवी पर ही लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं 21 साल से करप्शन चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया, क्रिकेट में इतना करप्शन है, 200 पाकिस्तानी मर गए हैं जुलाई के महीने में, ऐसी रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आ रही हैं जिसमें 115 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस समय? हर प्रोविंस में एक तरह से ऐसी खबर आ रही है कि आग सी लगी हुई है।
4: बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं फिर भी डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट जरूर उनकी करती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो सच बोल देते हैं, जो कि मोहसिन नकवी ने अभी तक नहीं किया, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया पर हो या कहीं भी, वो कोई ना कोई बात कर जाते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस वक्त गवर्नमेंट जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, चाहे एजाज सैयद हों, चाहे असद तूर या दूसरे लोग, उनको नोटिसेस जा रहे हैं, उनको उनके खिलाफ जो है केसेस बनाए जा रहे हैं कि कौन बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। चाहे इमरान खान का नाम ले लीजिए, चाहे जो कुछ कंट्री में हो रहा है उसके लिए अगर बात करें, तो उन लोगों को अभी तक नोटिसेस जाने शुरू हो चुके हैं, एंड आई डोंट नो के मेरे दरवाजे तक कब आते हैं।
0: आप सुरक्षित रहिए। एंड संदीप, दिस डज पॉइंट टू पाकिस्तान वर्चुअली बीइंग एट ब्रेक पॉइंट।
5: There's every single manner of crisis that Pakistan is going through now. There is an economic crisis. There is an internal security crisis. There is the only area that they don't seem to have a crisis is external, because Asim Munir has bought some time. He's trying to mediate that war between Iran and the United States, though it doesn't
0: except
5: seem to
0: Trump
5: be
0: did not name him
5: right
0: just now.
5: Now
0: as the mediator,
5: Trump
0: and that's being seen as a loss
5: him.
0: Of face for
5: big,
0: Pakistan.
5: I think Trump is losing his patience with Munir as well. He's not delivering the Iranians to him the way that he had promised. So if that also, it flips, then Pakistan is in serious trouble, because externally they need that $10 billion from the United States. If they don't deliver the Iranians as part of the peace deal, they're not going to get any money for this. So literally, Asim Munir has enormous stakes in the game that's going on right
0: and
5: now.
0: And this is where India needs to be very careful, Sandeep, because each time Pakistan is in trouble and it's on the verge of breaking up, to unite Pakistan, they try and attack India, because that's the only way they think that they can stay united when they say they've attacked a kafir Hindu country. This is where India needs to be very, very careful. We'll be tracking that story very closely, and Pakistan should not forget there's been one Operation Sindoor and there can be many more. Arzu and Sandeep, many thanks. We'll be tracking that story closely. That is all I have for you on India First this evening. Many thanks for watching.

0: Welcome back. Pakistan is on the brink. Many say it's virtually a civil war in Balochistan between Baloch freedom fighters and Pakistani forces. In Khyber Pakhtunkhwa, there's one attack after the other on security forces, with Pashtuns rising for their rights. There's massive trouble in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Pakistan-occupied Gilgit and Baltistan, where elections are being rigged in favor of PMLN, Pakistan Muslim League Nawaz, and the allegation comes from Bilawal Bhutto Zardari of Pakistan People's Party. But there is also this uncivil war between Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif and Pakistan's Interior Minister Mohsen Naqvi. They're both sniping at each other. They both belong to the same party. The Home Minister and the Defense Minister of Pakistan are at war in a month where more than 200 Pakistanis, including 120 Pakistani security forces, were massacred in this civil war. The situation is alarming. Now, Mohsen Naqvi, Interior Minister, he's made a public statement. He says he's going to give details of the biggest scandal, biggest corruption scam in Pakistan that involves judges, higher judiciary, members of parliament, lawmakers and bureaucrats in Pakistan, a scam that's been on for over 20 years. He said the system in Pakistan has collapsed, virtually saying Pakistan has collapsed and a new order is required. Many interpret this as paving the way for Asim Munir, the all-powerful Field Marshal of Pakistan, Chief of Defense Forces of Pakistan, Chief of Army Staff of Pakistan. Now he wants to take over as Sadr-e-Riyasat of Pakistan, which is the President of Pakistan. Khwaja Asif actually shot back. Again, same party, PMLN, Defense Minister of Pakistan. He told the Interior Minister of Pakistan, Mohsen Naqvi, to begin a revolution, start from your own ministry. He questioned, why is he speaking outside the government instead of raising these issues within the cabinet? He also said, if Naqvi truly wants a reform, he should fix his own institution, whether it's the Interior Ministry or Pakistan Cricket Board, where he serves as the chairman. Listen in.
1: देखिए मैंने अपनी जाती राय का इजहार किया है और मैं नॉर्मली ना करता, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने जो अपने फरमूदात जो है जारी किए ना, तो मेरा हक बनता था या मेरा फर्ज बनता था कि मैं रिकॉर्ड जो है स्टेट करूँ। वो कभी किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, वो कभी किसी असेंबली के इजलास में कम अज कम मैंने नहीं देखा,
2: दो तीन दफा देखा होगा, किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए।
1: मैंने एक दो दफा देखा उनको या दो तीन दफा देखा होगा।
2: ओके,
1: और जो पार्लियामेंट में जो है 5-6-7 दफा देखा होगा। मैं, हो सकता है मेरा, मैं ना हूँ, तो ज्यादा दफा आए हूँ, 2-4-5 दफा ज्यादा आया हूँ। आप असेंबली का रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरी भी तस्वीर हो जाएगी, आपका रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो जाएगा कि असेंबली में कितनी दफा आए हैं और कैबिनेट में कितनी दफा आए हैं। दो तो ये होगी।
0: Imagine a civil war in a country between the defense minister of the country and the home minister of the country, a rather uncivil war. But what should one make of this war? And is it endgame Shahbaz Sharif? Because I want you to listen in to Bilawal Bhutto Zardari, the chief of Pakistan People's Party, saying, tick tock, tick tock, tick tock. Hear the clock. The countdown has begun. Listen in.
3: और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है, मुसरे इतना, क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने, टिक टॉक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
0: टिक टॉक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू। पाकिस्तान इज अ जोक। व्हाट शुड वन मेक ऑफ रिपोर्ट्स दैट आसिम मुनीर, द फील्ड मार्शल who's facing fire on multiple fronts from POJK to Balochistan, he wants to split Pakistan from the current four provinces, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh, and of course Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Pakistan-occupied Gilgit, Baltistan. He wants to split them into multiple provinces, at least 12, each into three and then multiple more. Why? Because one, he wants to be Sadr-e-Riyasat. Two, he says he wants better administration. But three, analysts say he wants to break subnationalism, the Pashtun pride, the Baloch pride, the Sindhi pride. He wants to just destroy it. Joining me from Pakistan is Arzu Kazmi. She joins us from Islamabad. Sandeep Unnithan is senior journalist. Arzu, There are reports that multiple containers have been put on the streets of Islamabad. ये जब कंटेनर आते हैं क्या 111 ब्रिगेड भी अब आने वाली है?
4: गौरव, ये कंटेनर्स तो अक्सर ही इस्लामाबाद में रहते हैं और अब हम इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी भी कह सकते हैं। जैसे ही कोई प्रोटेस्ट या कुछ होने का इनको डर होता है तो ये कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज यहाँ पर असेंबली भी है, यहीं पर पार्लियामेंट भी है और साथ ही साथ जो है एम्बेसीज भी हैं, तो इसलिए भी ये कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। और इस वक्त जो बिलावल भुट्टो का आपने क्लिप दिखाया तो डेफिनेटली बिलावल को कहीं से इशारा हुआ होगा, उनको किसी ना किसी ने कहा होगा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और तभी वो ये बात कर रहे हैं। और यही बात मैं मोहसिन नकवी के लिए भी कहूंगी।
0: टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू, इसका मतलब क्या है?
4: इसका मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शायद बैकपैक हो गया है और उनको हटाया जाएगा या उनकी गवर्नमेंट को हटाया जाएगा। बिलावल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, मोहसिन नकवी भी जो कह रहे हैं कि जी एक नया सिस्टम लाया जाएगा, तो उनको भी कहीं से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही कहा गया होगा, वरना कुछ दिन पहले तो जो GDISPR साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा था कि जी पाकिस्तान से हमारे पड़ोसी जल रहे हैं, पाकिस्तान से भारत और अफगानिस्तान जल रहे हैं, ये बात की गई थी ISPR की तरफ से। तो अब अचानक से पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो क्लैप्स कैसे कर गया है, तो यहाँ कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और बिलावल तक ये बात पहुंच रही होगी, शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू है।
0: टिकटॉक टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू। संदीप, you know, whenever there's action in Pakistan, and we've seen that long history, the 111 brigade or the coup brigade of Pakistan gets very active between Islamabad and Rawalpindi. Interior Minister Mohsin Naqvi actually paving the way for his brother-in-law, Field Marshal Asim Munir, to take over as Sadr-e-Riyasat. Is that what you're picking up?
5: Well, Gaurav, the Field Marshal Munir is the most powerful military leader in the history of Pakistan. He's only the second field marshal. He's the first chief of defense forces. God knows what other titles he's going to accumulate in the next couple of years. Now, the fact is that
0: perhaps
5: the 27th Amendment is what brought him to power, Gaurav, and it literally sealed his dominance over the Pakistani system. And that's why you have the hybrid system. So I don't think that 111 Brigade is needed anymore, Gaurav. They'll be staying in the barracks because Asim Munir's power is cemented through constitutional authority. And now, as you mentioned, the 28th Amendment is possibly one of the biggest tectonic shifts in Pakistan's history. This talk of breaking up the four provinces into 12 provinces to destroy what they think is, Pashtun subnationalism, Baloch subnationalism, all of this. And possibly Munir elevating himself to an executive presidency of the kind that we've seen under General Musharraf. All of this has been tried in the past, Gaurav. You've seen in the 70s, you had the one unit system when they wanted to deny the Bengalis of East Pakistan representation. They came up with this one unit system. And today, they want to go back to breaking up the country into multiple things. It's all distracting, taking away from the fact that there is civil war inside Pakistan. The minorities there, the Baloch and the Pashtuns, are up in arms. This is all a very elaborate charade, a political charade to take attention away from the crisis that Pakistan is currently undergoing, Gaurav.
0: आरजू, क्या असल में बलूचिस्तान को नॉर्थ बलूचिस्तान, सेंट्रल बलूचिस्तान, सदर्न बलूचिस्तान, मतलब हर प्रोविंस को, हर सूबे को तीन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा? ये जो प्लान डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान की मीडिया में या उनके एनालिस्ट द्वारा, खैबर पख्तूनख्वा भी नॉर्थ, सेंट्रल, सदर्न, खैबर पख्तूनख्वा, यही सब पंजाब और सिंध में, ऐसा करने की क्या तैयारी हो रही है?
4: गौरव, बलूचिस्तान को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पंजाब का डेफिनेटली ये प्लान बहुत अरसे से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि पंजाब को डिवाइड किया जाएगा, पंजाब में से और प्रोविंसेस निकाले जाएंगे, क्योंकि अकेले नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में है या उनकी पार्टी के कंट्रोल में अगर है तो इनको सूट नहीं करता। लेकिन उसके लिए अभी तक लोग तैयार नहीं हुए हैं, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। ये काम इनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, ये इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जो एक सिस्टम जिसकी बात की जा रही है, अगर आपको याद हो गौरव, तो इमरान खान के वक्त भी यही कहा गया था कि इमरान खान को प्रेसिडेंट बना देंगे और 10 साल तक ये सिस्टम चलता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो इमरान खान के साथी थे उनको भी शायद यही लगने लगा था कि अब ऐसा ही होगा, और उन्होंने वही उसी तरीके से लोगों से बात करनी शुरू कर दी थी कि अब तो कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वक्त भी अगर ये कोशिश भी करेंगे तो अब ये जनरल मुशर्रफ का जमाना नहीं है, ना ही ये जियाउल हक का जमाना है। तो ये अगर ये सोच कर चलेंगे कि यहाँ पर वही सिस्टम लाएंगे और पब्लिक रखेगी या चल पाएगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा।
0: तो अगर आप कह रही हैं, जैसा आपने कहा कि शाहबाज शरीफ का या पीएमएलएन का बोरिया बिस्तरा पैक होना लगभग तय माना जा रहा है पाकिस्तान में, ऐसी हिंट्स आ रही हैं, अगर ऐसा होता है तो कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? मोहसिन नकवी या बिलावल भुट्टो जरदारी, या आसिम मुनीर को अगर सेफ पैसेज देंगे जरदारी साहब को तो बेटे को भी साथ जाना पड़ेगा?
4: देखिए, यहाँ म्यूजिकल चेयर चलती है, पहले इमरान खान, फिर पीएमएलएन, और अब पीपल्स पार्टी की बारी लगता है कि है। और बिलावल साहब जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वैसे तो मोहसिन नकवी को जो आसिफ अली जरदारी है उन्होंने बेटा बना रखा है, तो अगर वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाए तो फिर कौन से वाले बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाए, ये एक सवाल है। और यकीनन मोहसिन नकवी इस वक्त बिलावल से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं।
0: मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो जरदारी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान में पूरा अनरेस्ट इस समय चल रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि जब डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आपस में ऐसे यहां पर मतलब टीवी पर ही लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं 21 साल से करप्शन चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया, क्रिकेट में इतना करप्शन है, 200 पाकिस्तानी मर गए हैं जुलाई के महीने में, ऐसी रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आ रही हैं जिसमें 115 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस समय? हर प्रोविंस में एक तरह से ऐसी खबर आ रही है कि आग सी लगी हुई है।
4: बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं फिर भी डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट जरूर उनकी करती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो सच बोल देते हैं, जो कि मोहसिन नकवी ने अभी तक नहीं किया है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया पर हो या कहीं भी, वो कोई ना कोई बात कर जाते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस वक्त गवर्नमेंट जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, चाहे एजाज सैयद हो, चाहे असद तूर या दूसरे लोग, उनको नोटिसेस जा रहे हैं, उनको उनके खिलाफ जो है केसेस बनाए जा रहे हैं कि कौन बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। चाहे इमरान खान का नाम ले लीजिए, चाहे जो कुछ कंट्री में हो रहा है उसके लिए अगर बात करें, तो उन लोगों को अभी तक नोटिसेस जाने शुरू हो चुके हैं, एंड आई डोंट नो के मेरे दरवाजे तक कब आते हैं।
0: आप सुरक्षित रहिए। एंड संदीप, दिस डज पॉइंट टू पाकिस्तान वर्चुअली बीइंग एट ब्रेक पॉइंट।
5: There's every single manner of crisis that Pakistan is going through now. There is an economic crisis. There is an internal security crisis. There is the only area that they don't seem to have a crisis is external, because Asim Munir has bought some time. He's trying to mediate that war between Iran and the United States. Though it doesn't
0: except
5: seem to
0: Trump
5: be going
0: did not name him
5: right
0: just now.
5: Now
0: as the mediator,
5: Trump
0: and that's being seen as a loss
5: him.
0: Of face for Pakistan.
5: I think Trump is losing his patience with Munir as well. He's not delivering the Iranians to him the way that he had promised. So if that also, it flips, then Pakistan is in serious trouble, because externally they need that $10 billion from the United States. If they don't deliver the Iranians as part of the peace deal, they're not going to get any money for this. So literally, Asim Munir has enormous stakes in the game that's going on right
0: and
5: now.
0: And this is where India needs to be very careful, Sandeep, because each time Pakistan is in trouble and it's on the verge of breaking up, to unite Pakistan, they try and attack India, because that's the only way they think that they can stay united when they say they've attacked a kafir Hindu country. This is where India needs to be very, very careful. We'll be tracking that story very closely, and Pakistan should not forget there's been one Operation Sindoor and there can be many more. Arzu and Sandeep, many thanks. We'll be tracking that story closely. That is all I have for you on India First this evening. Many thanks for watching.

0: bring down the DMK government or the DMK
1: let's not get into mafia. Let's not put baseless conspiracy theories about mafia. I accept that Udayanidhi did not use the words Trisha, but there was clearly sexually suggestive remarks that were made. Felix Gerald, I will ask you therefore in conclusion. Whether you agree with it or not, Vijay seems versus Udayanidhi is going back to now Karunanidhi versus Jayalalitha. And that's not what Tamil Nadu leads. Let the leader of the opposition function. There seems to be, ever since Vijay has come in, he is determined to settle scores. Is that what a chief minister should do? He's supposed to be a new face. He's practicing old vendetta politics.
2: There is not even a single inch of vendetta. This is a new government. We want to set an example. And all these 70 years, they're enough of abusing women in public places. And they are not public property, as Mrs. Pushpu Sudha said. They are public figure. Give them respect. And today, the society have changed. Politicians have not changed. Okay? This is a message. You can be anybody. But mind your words when you in the public,
1: okay.
2: Especially when you address women.
1: I will take that as a point. I cannot disagree with that. Mind your words when you are talking about women in public life. Thank you all very much to my guests for joining me. My take here: women have been soft targets. Let me repeat that: women have been soft targets in Indian politics for far too long. From Prime Minister Modi's 50 crore girlfriend jibe at Shashi Tharoor's wife, to Sanjay Nirupam's Nachne Wali slur against Smriti Irani, to an Udayanidhi Stalin's sexually suggestive remarks, the pattern is depressingly familiar and there are many instances. There is outrage for a few days, followed by silence, no real accountability. Yes, the Vijay government's hasty arrest of Udayanidhi without due process was an abuse of power. But that should not distract from the central issue. His remarks were unacceptable, deserved widespread condemnation. Political leaders occupy positions of public trust. Their words shape public discourse and set the tone for civic behavior. There is simply no space for sexist, sexually loaded or demeaning comments in democratic politics. Public debate must be elevated by those in leadership, not dragged into the gutter. Udayanidhi Stalin needs a wake-up call. Okay, let's from there turn to what's been happening in Parliament today, where once again Amit Shah was the focus of the opposition's ire. They are insisting that Amit Shah, the Home Minister, come to address Parliament on the crackdown on the July 20th march in Delhi. The Samajwadi Party also raising the Ayodhya Mandir donation row, demanding a statement by Prime Minister Narendra Modi. The government hitting back, accusing the opposition of initially opposing the Mandir's construction. But the question remains, where is the Home Minister? Listen in.
3: Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust aur usme jo bahumulya bheto nagad daan zameen khareed aur prabandhan ko lekar gambhir aarop samne aaye hain. ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है. इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है. प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की
4: विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं. नहीं कर सकते ये भगवान राम को मानते नहीं है शरण में रहते हैं हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठा रहे माफी मांगना चाहिए जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे ये लोग
1: Okay, let me turn from there to our ground report today, which is coming from Jharkhand, where the Jharkhand students' protest against examination irregularities in the state has entered day 11. The hunger strike of the students is growing. There are more groups joining in. An assembly gherao has been announced, and the agitation is only getting stronger. But alongside the students' demands, another demand debate is now gathering steam. Is politics deciding who gets support and who gets silence? Will those who opposed Dharmendra Pradhan also question the Jharkhand government? Here's a report.
5: The Jharkhand students' movement isn't slowing down. It's only getting bigger. The protest over alleged recruitment scams has now entered day 11, with Ranchi's Jaipal Singh Munda Stadium fast becoming the state's own Jantar Mantar. Students continue to demand a CBI probe into alleged irregularities in Public Service Commission and Staff Selection Commission recruitments, fresh examinations and action against those behind the alleged paper leaks.
6: CID ho gaya. उस पे विश्वास हो ही नहीं पा रहा तो सरकार के ऊपर क्या ही विश्वास करके करेंगे होगा तो ही विश्वास कर पाएंगे क्या कि विश्वास नहीं है क्योंकि सरकार तो सीआईडी को जांच करने दे देता है सीआईडी तो जांच करके देता है सरकार का वो तोता है जो चाहेगा वही करवाएगा हम लोग को एक ही उम्मीद है कि सीबीआई को सौंप दे ये चीज
7: हमें सीआईडी पे एक्चुअली भरोसा नहीं है
8: नहीं है
7: नहीं सीआईडी पे नहीं है क्योंकि इनकी जो जांच एजेंसी है ये निष्पक्ष तरीके से जांच कर ही नहीं रही है
8: लोग आ रहे हैं और ये सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे
5: The government is considering a high level committee but protesters say they don't trust a CID probe The agitation is also intensifying One protest tent continues to be led by student leader Devendranath Mahato who remains on an indefinite hunger strike. A second tent has now begun its own fast, with five more students joining the hunger strike. Food and supplies are pouring in from across Jharkhand as public support for the movement grows. The protesters have now announced their next course of action, an assembly gherao on August 10th during the monsoon session, along with a march on Shibu Soren's first death anniversary. Meanwhile, the BJP has sharpened its attack.
9: पिछले 15-20 दिन से लगातार झारखंड धूप गर्मी बरसात सबों में हमारे बच्चे पड़े हुए हैं उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं जा रहा है और सीबीआई की इंक्वायरी करा देने में क्या परेशानी है
5: Responding to the growing pressure, the government assured that they are working towards a solution.
10: जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर कर लगी हुई है उसका उत्तर का हमें इंतजार है उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है उसके खोज का हमें इंतजार है
5: 11 days in, the tents are multiplying, the crowds are swelling, and the agitation is gathering political heat. The question now isn't whether the movement is growing, but how long the government can afford to wait before responding. With Satyajit Kumar, Bureau Report, India Today.
1: Let's turn from Jharkhand to what happened in Bihar, because a day after his upset win over BJP in their stronghold of Bakipur, newly elected Bihar MLA Prashant Kishore spoke exclusively to India Today's Rohit Singh. He explained the main reason why he could topple the ruling party in their own citadel. Here is an excerpt.
11: चुनाव के पहले भी हमने आपसे बात की थी आपने इसमें एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की वो था जनमत संग्रह और आप ये कह रहे थे कि भाई ये एक रेफरेंडम हो सकता है इसमें मौजूदा सरकार पर, सम्राट चौधरी पर, और आप ये भी कह रहे थे कि भाई एक वोट या एक विधायक जीत जाएगा तो सरकार में कुछ नहीं होने वाला है, एक विपक्ष भी जीत जाएगा तो कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको ये नैरेटिव जो है लोगों के घर कर गया वो दिल में भाया?
12: नहीं, देखिए लोकतंत्र है और जिन लोगों ने भाजपा को एनडीए को वोट दिया उसमें एक प्रमुख मुद्दा प्रधानमंत्री ने आकर खुद बनाया कि जंगल राज नहीं लौटना चाहिए, लेकिन उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को आपने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और लोकतंत्र में यह संभव है कि जो पार्टी जीतकर आए उसका उसका नेता जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनाएगा तो जनता के पास भी ये अवसर है अपना मत देने का। तो पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री यहां बना है और लोगों ने जब वोट दिया तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट मोदी जी को मैसेज दिया है ये लोगों ने, क्योंकि ये भाजपा के विरोधी लोग नहीं है, ये भाजपा के समर्थक हैं। गौर करने वाली बात है कि बांकीपुर में जिन लोगों ने वोट दिया है जनसुराज को, ये ज्यादातर लोग भाजपा के समर्थक लोग हैं। इन्होंने क्यों वोट दिया? इसलिए वोट दिया क्योंकि उनको भाजपा का अहंकार स्वीकार्य नहीं है, उनको भाजपा का ये वक्तव्य नहीं स्वीकार्य है कि कुत्ता बिल्ली को भी हम देंगे तो भी तुमको वोट देना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर उनको ये बात नहीं स्वीकार्य है कि जिस बिहार को जंगल राज से मुक्त करने के नाम पर आपने वोट लिया उसी जंगल राज के किसी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों के पास मोदी जी को फोन करने का अवसर तो है नहीं, लोग मोदी जी से मिलकर तो बात नहीं कर सकते हैं। लोगों के पास क्या अवसर है? वोट का अवसर है। तो हमने लोगों को बताया कि भाई अगर आप मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व आपको स्वीकार्य नहीं है तो यही मौका है आपके पास, आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, मोदी जी को खबर होगी। और आज मैं समझता हूं कि मोदी जी को खबर हुई है कि 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, सारे समीकरण ध्वस्त है। जब ये वो भाजपा है जो कहती हम बूथ जीतते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, शक्ति केंद्र बनाते हैं, कहां गया सब?
1: More of that interview on IndiaToday.com. Let's take a break. When we return, a fascinating story. 20 days after its opening, the Kanpur-Lucknow Expressway is once again seeing a repair. A fifth repair is now triggering an NHAI probe and the removal of three engineers. We'll tell you why on the other side. Get Real India, an expressway under scanner.